0: उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
1: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितने का घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जैनजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
2: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पर मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर, जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है, तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
3: Shifting our focus, protests at the lovely professional university over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students, and the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
4: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की, और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई, और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए, और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from lovely professional university where we have seen the students, they were holding protests since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters, they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials, they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters. So we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken action against these protesters.
5: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
6: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
7: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
8: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
7: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
6: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
3: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation, while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back, asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
9: वार्डो में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए सुनिए, 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
10: सपा ज्वाइन कर रही
9: है,
10: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा.
9: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया. आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
10: हेलो पार्षद जी,
9: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं.
10: कहा हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
9: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
10: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
9: तरकुलानी चालू. पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है.
11: गोरखपुर के सांसद सड़क पर उतरे हैं, हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर उतरे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
12: बहुत दुखद है. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ, और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं, और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है। उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ये प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पे, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
13: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
14: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
3: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
15: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
16: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
17: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
18: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: Now getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's visit to Washington. This includes a $30 billion tariff reduction deal, a new trade council, and a fresh dialogue on artificial intelligence. Take a look at this report.

0: University disputes the claims circulating online. And the violence that followed has left extensive damage across the campus.
1: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं
0: What began with demands for answers has now become a wider question of student safety, institutional response, and how quickly unverified claims can turn into campus-wide unrest. Bureau Report, NDTV.
2: Switching tracks to Delhi now, and it's the Slapgate row that's escalating. A complaint has been filed against Parvesh Verma. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action, asking for an FIR to be filed against Verma. And he has countered those allegations and said, and we also have Rahul Gandhi who's joined the war of words with a vote chori attack. Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilaknagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. The party says that the complaint over the alleged assault has now been acted upon and has warned of a dharna if the police action is delayed. We have Sahib Singh, Aam Aadmi Party leader, who has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others also seeking a probe into the alleged road scam. The complaint involves four BNS sections. This is including hurt and intimidation. We have Leader of Opposition Rahul Gandhi of the Congress Party weighing in on the issue, accusing the BJP of arrogance and vote theft over the slap row. Parvesh Verma has hit back at Rahul Gandhi, saying that he doesn't know the facts. Meanwhile, the BJP has flagged an earlier FIR against Sahib Singh, and in fact, the case was registered in June at Tilaknagar Police Station under BNS Sections 115, 126, and also with the BJP claiming that he was previously arrested.
3: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा
5: नहीं जाएंगे जब तक परवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे
6: देखिए अपनी चोरी पकड़े जाने पर भाजपा के मंत्री परवेश वर्मा किस तरह बौखला गए और कैमरे से उनकी चोरी रिकॉर्ड करने वाले को थप्पड़ मार के गुंडों की तरह किस तरीके चोरों की तरह फरार हो गए वो आज सब ऑन कैमरा हुआ है और हमारी ये मांग है मंत्री जी ने मेरे को फोन किया कि आओ जी मैं आपके क्षेत्र में निरीक्षण करने आया हूँ मैं यहाँ पर आ गया मुझे लगा शायद सड़क का निरीक्षण सड़क में क्वालिटी देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई करेंगे मुझे कह रहे दिखाओ कहाँ से सड़क टूट रही है मैंने पूरी सड़क कारपेट की तरह उखाड़ के दिखा दी तो मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो हमारा साथी रिकॉर्ड कर रहा था उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के यहाँ से भाग गए अरे जब तक मंत्री परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे
2: And let's just switch tracks now to Tamil Nadu. It's the chief minister who's set to launch the new scheme in Madurai, offering a 1 gram 22 carat gold ring to eligible newborns in the government hospitals. The first phase has about 1.28 lakh rings with babies born from the 22nd of June who are said to be eligible. The scheme draws on the

0: जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
1: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
2: हम लोग नहीं जाएंगे जब तक परमेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी। हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
3: देखिए अपनी चोरी पकड़े जाने पर भाजपा के मंत्री परमेश वर्मा किस तरह बौखला गए और कैमरे से उनकी चोरी रिकॉर्ड करने वाले को थप्पड़ मार के गुंडों की तरह किस तरीके चोरों की तरह फरार हो गए वो आज सब ऑन कैमरा हुआ है। और हमारी ये मांग है, मंत्री जी ने मेरे को फोन किया कि आओ जी मैं आपके क्षेत्र में निरीक्षण करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लगा शायद सड़क का निरीक्षण, सड़क में क्वालिटी देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई करेंगे। मुझे कह रहे दिखाओ कहाँ से सड़क टूट रही है, मैंने पूरी सड़क कारपेट की तरह उखाड़ के दिखा दी। तो मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो हमारा साथी रिकॉर्ड कर रहा था उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के यहाँ से भाग गए। अरे जब तक मंत्री परमेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
4: Right, let's just also get you the very latest from Tamil Nadu. It's the Chief Minister of the state who's set to launch the Thai Mamman Thanga Modiram scheme in Madurai, offering 1 gram of 22 carat gold rings to eligible newborns in the government hospital. In the first phase, about 1.28 lakh rings with babies born from the 22nd of June are set to be eligible. The scheme draws on the Tamil tradition of the maternal uncle, the mama, gifting newborns. But the rollout faces political criticism, with the DMK's Udhanidhi Stalin accusing the Vijay government of failing to deliver on key promises, and those include women's allowance, the aid for the youth, and also free LPG cylinders and crop loan waivers as well, while also alleging, as far as the law and order situation is concerned, that that is only worsening. Vijay's government meanwhile says that the gold ring scheme is aimed at encouraging deliveries in government hospitals of the state. Let's just switch tracks now to Punjab from Tamil Nadu. Protests at the Lovely Professional University, or the LPU, over alleged sexual assault claims turned violent. Students started to vandalize the campus property, clashing with the police. The protesters had even set parts of the campus property and buildings on fire. As the unrest escalated through the night, police personnel were deployed in large numbers as the clashes only intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence as the situation only spiraled. The police resorted to lathi charge in order to disperse the protesters and bring the campus situation under control. The dean of LPU, Saurabh Lakhanpal, has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying that violence was not the representative of the university students. But the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding the incident.
5: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिसपे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहां पे उनको लेके वहां पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहां पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई। और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे, ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियां मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई।
6: क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है, और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
7: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
8: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
9: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे,
8: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
7: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit.

0: और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ

0: Language that should not be used by any political party, including their own, saying that they've never used such language, even though we have to fact check that. Take us through the latest reactions coming into Udaya Nidhi Stalin's remarks.
1: Parmeshwar, that's right, but both TVK chief Vijay and leader of opposition Udaya Nidhi Stalin have not used these terms in a serious tone, just for their political benefits they are using this. But BJP has reacted only after Udaya Nidhi Stalin has used similar kind of words. But Vijay has been using these slogans, Om Shakti Parashakti, for past almost 2 years, projecting DMK as a evil force just before 2026 elections. But now Udaya Nidhi Stalin also has responded to this. Now BJP also has reacted. We have to wait whether DMK and TVK, how they are going to respond to BJP criticism. So far, other parties have not responded to the specific remarks, but these are all just ahead of this specific bipole for Madhurandagam and Dharapuram, as these two constituency bipole is very important for TVK, ruling TVK, and also opposition DMK and also ADMK party, because for TVK they have only 106 seats. They won 106 seats in 2026 elections. They form the government with the support of allies like Congress, VCK, left parties and IUML. So now they want to get that majority on their own. That's why it is very important for TVK party, and also referendum for TVK. The people might put mark to TVK's 3 months of governance in this bipole. It might reflect how their governance, how TVK is giving governance in last 3 months. So for right. DMK also, it's very important bipole, being a principal opposition party. And for ADMK, it is a battle of prestige, Parameshwar. So we have to wait how other leaders also going to respond to these kind of campaigning in both the bipole constituencies.
0: The run-up to the bipoles, we'll of course be tracking all the finer developments with you, Vijay. Thanks so much. Listen in to what the Chief Minister has said as he hurled an attack at the DMK.
2: Konjan touchi vittu pochi. Om Shakti Parashakti. Om Shakti Parashakti. அப்புறம் ஏன் இந்த தீய சக்தி நம்மளை பார்த்து தினம் தினம் இந்த மாதிரி அவதூறா அசிங்கமா ஆபாசமா பேசிக்கிட்டு ஒரே ஆபாச நதியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நாட்டில்.
0: Mr. A. Sarvanan joins us on behalf of the DMK this morning on the breakfast show. Mr. Sarvanan, glad to have you back. Thank you so much for your time. Well, Vijay has repeatedly attacked the DMK as an evil force. Mr. Udaya Nidhi Stalin has hit back. What's your message to the TVK this morning?
3: See, please ensure that the people of Tamil Nadu are taken care. Don't try wasting the time just attacking DMK. This is not the pre-poll season. You are the chief minister. You have formed the government. Tell the people what you have done and seek votes. Instead, attacking DMK even after 4 months of power shows that you are insecurity, that you are not able to deliver anything on your promises. And that is what our leader, Mr. Udaya Nidhi Stalin, has also pointed out. He repeatedly is asking, look at the promises made by them, and they are not even able to fulfill any of those promises. Not even one. They are not taking any efforts to do that. That is the issue. Instead of attacking DMK, if you attack DMK, we will also do that. We did not do that prior to the 2026 elections because we thought you wouldn't be a big force. Somehow you've become the ruling party. Now you will not be able to take up, tolerate if we start attacking you, and that is what we have started doing.
0: All right. Mr. Sarvanan, thank you for the clarification. We will, of course, get in touch with the TVK for their primary response. Mr. Udaya Nidhi Stalin had invoked the Om Kali Jai Kali remark as well. The crowd had responded with a slogan targeting the TVK. Whether the DMK is deliberately taking Vijay on at his own level of political rhetoric, that remains to be seen. We will, of course, try and get in touch with the TVK for their response too. You must note that Tamil Nadu Chief Minister Vijay is set to launch the Thai Maman Thanga Modiram scheme in Madurai, offering 1 gram 22 carat gold rings to eligible newborns in government hospitals. Now, the first phase has 1.28 lakh rings, with babies born from the June 22nd date that are considered eligible. This scheme draws on the Tamil tradition of the maternal uncle gifting newborns, but the rollout faces political criticism. You see, DMK's Udaya Nidhi Stalin has accused the Vijay government of failing to deliver on key promises, including women's allowance, youth aid, free LPG cylinders and crop loan waivers, while also alleging a deterioration in the state of law and order. Vijay's government, meanwhile, says the gold ring scheme is aimed at encouraging deliveries in government hospitals. Here are the reactions you need to listen to.
4: அனைத்து இல்லங்களுக்கும் அனைத்து வீடுகளுக்கும் வருஷத்துக்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர் ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த நிமிஷம் கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு, கொடுத்தாரா? இப்பதான் அதை பத்தி யோசிச்சிருக்கிறாரு. என்ன தெரியுமா சொல்லிருக்காரு? 3 கொடுப்பேன், 3 கேஸ் சிலிண்டர் கொடுப்பேன், அதுவும் நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்பதான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது எல்லாத்தோட முக்கியம், விவசாயிகளுக்கு அனைத்து பயிர்க்கடனும் உடனடியாக தள்ளுபடி செய்வேன்னு சொன்னாரு, கொடுத்தாரா? எதையும் கொடுக்கல. அதே நேரத்துல
5: நாம அத்தனை பேராலும் மறக்க முடியாத ஒரு சோக நிகழ்ச்சி கரூர்ல நடந்தது. பிரச்சாரம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கிளம்பி போய் கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் தாமதமா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் வெயில நிக்க வச்சு குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்காம ஒரு கழிவறை வசதி கூட செஞ்சு கொடுக்காம மிகப்பெரிய ஒரு ஜன நெருக்கடியை மக்கள் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி மேடையை ஏறி வண்டி மேலே ஏறி பாட்டு பாடி கிட்டத்தட்ட 41 பேர் இறப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி அந்த சம்பவத்துக்கு காரணமான ஒருத்தர், அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கூட பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கூட சொல்லாம திரும்பி கூட பார்க்காம கரூர்லேருந்து திருச்சிக்கு போய் அங்கேருந்து சென்னைக்கு ஓடி போனார். இன்னைக்கு அவர் முதலமைச்சர் ஆயிருக்கலாம், ஆனா இனிமே அவர் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இந்த சம்பவத்தை நினைச்சு தூங்க முடியாது, நிம்மதியா தூங்க முடியாது. ஸ்பெஷல் டீம் அறிவிச்சாரு, ஆனா இவங்க என்ன சொன்னாங்க, மாநில அரசு ஸ்பெஷல் டீம் அறிவிச்சா நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டு அதை கேட்டு வாங்கினாங்க, சிபிஐ விசாரணை வாங்கினாங்க. இன்னைக்கு அந்த சிபிஐ விசாரணை டெல்லியில் இருக்கிறதுனால தான் பாஜகவுக்கு ஒரு 1-ஆம் நம்பர் அடிமையாக இன்னைக்கு இந்த முதலமைச்சர், டம்மி முதலமைச்சர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.
0: All right, on that note, let's turn our attention to the other big story we're tracking this morning. Delhi's Public Works Department Minister Parvesh Singh Verma slapped a man on camera and that matter is now escalating. A complaint has now been filed against Parvesh Verma with the Aam Aadmi Party hitting the streets demanding action. While the PWD minister, I beg your pardon, has countered the allegations, Rahul Gandhi is now asserting that vote chori had made the ruling party fearless of elections and voters. This is Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. In fact, Aam Aadmi Party's Delhi unit president Saurabh Bhardwaj, he was detained by Delhi police amid this protest in Tilak Nagar, and the Aam Aadmi Party continues to demand action against Parvesh Verma. The man who got slapped, Sahib Singh, has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam, the poor quality of the roads that they had also ripped apart on camera. The complaint invokes 4 BNS sections, including hurt and intimidation. This as Rahul Gandhi has accused the BJP government of using force against people who question those in power, arguing that vote theft buys not just the result, but the arrogance that follows. Parvesh Verma says Rahul Gandhi doesn't know the facts. But the incident actually took place, as you know, when the minister was inspecting a newly laid road in the area. AAP MLA Janel Singh, who was present at the spot, questioned the quality of the work, pulled out sections of the road, portions, chunks of the road by hand. And a man standing nearby and recording the proceedings was then slapped by the PWD minister. Now, the Delhi BJP is defending Parvesh Verma and claiming that Sahib Singh was a habitual offender, flagging an earlier FIR against him. We've lined up crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
6: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया. जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
7: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है, उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
8: उनको भी नुकसान हुआ है?
7: फोन को भी नुकसान हुआ है, फोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
8: कितने बजे हुई है घटना?
7: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है, हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे, 2 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
8: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
7: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं ना गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये, और ये बोलते हैं जैनजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
9: दिल्ली के तिलक नगर में BJP की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई, सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
10: नहीं जाएंगे जब तक परमेश वर्मा पर FIR नहीं होगी, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
8: आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जर्नैल जी, जो पूरी घटना हुई है ये कैसे हुई और उस समय की स्थिति क्या थी?
11: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है। 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद, कारपेट की तरह। ये देखो ठीक है। अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई, तो मुझे आज संडे का दिन है 1:15 पर परमेश वर्मा जी जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊं तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो। बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार PWD मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया, मैं यहाँ कुछ देर में पहुँच गया तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा। तो मंत्री जी कह रहे बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी। तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पे उनको लेके आया और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है। तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पर, आप पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया। अब होना ये चाहिए था कि PWD के इंजीनियर से मंत्री जी को जवाब लेना चाहिए था। ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, जमीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परमेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
0: The big question is, of course, why did a serving minister, a PWD minister, respond physically to a citizens when the genuine road quality issues were being flagged? Anushka has been tracking the latest details for us. She joins us with the clarity we need currently. Anushka, to begin with, what is the status of Sahib Singh's complaint against Parvesh Verma?
12: Well, Well, Parmeshwar, what we are given to understand is that the police have registered complaint based on the facts that both the parties have in fact provided.

0: hosting.
1: As always, Pradeep, thanks so much for joining us with the latest. We will, of course, revert to you for regular updates on how this probe is progressing. Ravneet Singh Bittu has also linked the alleged conspiracy to the controversy surrounding government bungalows allotted to Delhi leaders, the Gayatri Bishnoi dispute, and the departure of Ashok Mittal from the Aam Aadmi Party. What began with an allegation of sexual assault at Lovely Professional University has now become a full-blown law and order crisis. Protests over alleged sexual assault claims at LPU turned violent, with students vandalizing campus property, clashing with police, and setting parts of the campus on fire. Amid this unrest, LPU has suspended regular classes for 10 days now, prompting students to head home from the campus. This as students had vandalized campus property, objects were set on fire, there were minor incidents of arson. The Jalandhar-Phagwara highway that was blocked, and the confrontation with the police that escalated. Police say protesters pelted stones and attacked vehicles. Multiple police vehicles were set ablaze and personnel were injured. The Lovely Professional University Dean Saurabh Lakhanpal has now blamed anti-social elements for the vandalism and said the university suspects a conspiracy behind the escalation. Listen in.
2: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं
3: मोनिका गुलाटी रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया
4: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है
5: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे
6: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे
3: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है धन्यवाद
7: देखिए पहले जो इशू था कि हॉस्टल में कुछ गड़बड़ी है वो सारी अफवाहें थी एक एक हॉस्टल आप भी साथ थे सारे हॉस्टल चेक कर लिए गए हैं कुछ भी नहीं है अब ट्रैफिक भी खुल चुका है और अभी सारे स्थिति नॉर्मल में है तो आगे बच्चों से बात करके बाकी भी रिजॉल्व हो जाएगा
8: में तकरीबन 2000 से ज्यादा फोर्स हमारी मौजूद है यहाँ पे और शांति व्यवस्था बिल्कुल बरकरार है और बहाल है देखिए अभी ये सिलसिला चल रहा है अभी आपको स्थिति कंट्रोल में करने दीजिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ और पेरेंट्स के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि दे आर सपोज टू रिलैक्स कि बिकॉज उनकी बच्चियां यहाँ पर हैं हॉस्टल्स में तो वो इत्मीनान रखें कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है सभी महफूज है
9: जो हमने 5 व्यक्ति लड़के पकड़े हैं उनके पास एक दातर और वो जो वॉकी टॉकी सेट था वो रिकवर हुआ है अभी आगे उसकी पूछताछ होगी नहीं अभी तो उनकी जांच हो रही है
10: डिस्चार्ज पुलिस व्हीकल नरेट द स्टोरी ऑफ अनरेस्ट इनसाइड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस डे बिफोर यस्टरडे प्रोटेस्ट वाज ट्रिगर्ड बाय अनवेरिफाइड सोशल मीडिया रिपोर्ट अबाउट एलिज सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ one of the students inside the campus. Immediately after that, the agitated students, they came out of their classroom, they went on rampage, they vandalized the university, they broke glass panes, and then yesterday, some of the students came out on National Highway, they blocked a road. Police tried to disperse them. Some of the agitated students, they started pelting stones, they even hurled bottle. That was the time when police resorted to cane charging. And some students, they even burnt police vehicles, they did not even spare this motorbike. Police had to resort to cane charging to disperse those students. But now, things after 48 hours are limping back to normal. heavy deployment of police is around LPO campus. Advisory has already been issued. Classwork has been suspended for 10 days and students had been asked to go back to their respective places with the consent of their parents. Those who have to stay back in hostel, the advisory has been issued that they should not amplify any unverified report appearing on

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: बच्चों ने तो प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर जो लोगों को आने जाने में, जो पथराव में लोगों को चोट लग सकती है या कई तोड़फोड़ हुई है, ये गलत है। हर व्यक्ति को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, अभी बच्चों को शांति से रहना चाहिए।
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आगजनी हो रही है, दंगे भड़काए जा रहे हैं और प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठा हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि चाहे केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, ये दोनों फेल हुई हैं और ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पे दखल अंदाजी करें। और मेरा सीधा इल्जाम है कि ये जो दंगे भड़काने का काम है, ये केंद्र और पंजाब सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, ये दोनों फेल हुए हैं।
2: Well, LPU has refuted the allegations, terming them baseless and rumor-driven. But Pradeep has been tracking all the finer developments for us. He joins us live at the moment. Pradeep, can you clarify? There's an important change in the investigation, right? With the Kapurthala police now registering an FIR against unknown person in connection with this alleged rape at the LPU campus following a complaint by hostel students, we're given to understand. Also, reportedly, the case has been registered under Section 64, which is rape of the BNS at the Satnampura police station?
3: Yes, Parmeshwar, you are absolutely right. Your fire has already been lodged in this regard and SIT has been constituted. That SIT is going to investigate the matter. And what actually has happened, the students had been levelling several charges. So to ensure that there is a proper transparency and to satisfy the students, the five-member student team was also made the part of investigation. They were made to go through different hostels and also made to review CCTV footage. What the police is saying, so far, nothing objectionable has been found. So far as LPU authorities are concerned, they are saying this is a fabricated case, some antisocial element. They were trying to, in fact, destabilize situation, and this was a conspiracy hatched by them. And already we have seen the politics over this issue has already started. We have heard that how Union Minister, former Union Minister Ravneet Bittu, he said these are diversionary tactics. Basically, there had been several charges against the Aam Aadmi Party of allotting bungalows to AAP leaders from Delhi, and that's why they are trying to divert attention. And they are saying that also they are completely rattled because of the response and the enthusiasm that Nasha Mukt Punjab campaign that has been initiated by BJP earlier this month has initiated. So because of that also they're completely rattled. They want to divert attention. And the second important point what they are saying is that if you look at the owner of this university, Ashok Mittal, he was earlier a part of the Aam Aadmi Party. It was in the month of April he left Aam Aadmi Party and he joined BJP. And that's why they are just trying to settle score with this man. They want university to be closed. That's why some of the antisocial elements were involved to destabilize situation. But so far as the Congress is concerned, Congress is trying to put blame on both BJP as well as Aam Aadmi Party of not handling situation properly. They are saying that they are both hand in cloud just ahead of election. They are trying to create a situation where they want to destabilize atmosphere. That's what they are saying. But if so far as the investigation part is concerned, the police is saying they are properly looking into the matter. But yes, advisory has already been issued. They are saying that some unverified post triggered this kind of a protest that led the students to come out on the street, and finally that led to the burning of some of the police vehicle. And they are saying that we are looking into all the aspects. There will be scientific investigation to ensure that their justice is done, so that in future no such incidents happen. And what really led to this unverified post triggering protest, they will also investigate. Some people have already been picked up, they are detained and they are being questioned.
2: As always, Pradeep, thanks so much for joining us with the latest. We'll of course revert to you for regular updates in Phagwara. On that note, let's turn our attention now to the national capital. Delhi's Public Works Department Minister Parvesh Verma slapped a man on camera, and that matter is now escalating. A complaint has been filed against Parvesh Verma, with the Aam Aadmi Party also hitting the streets demanding action. The PWD minister has countered the allegations, but Rahul Gandhi is asserting that vote chori had made the ruling party fearless of elections and fearless of voters. This as the Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. In fact, you must note that AAP's Delhi unit president Saurabh Bhardwaj was detained by Delhi police amid the protest in Tilak Nagar. But the AAP continues to demand action against Parvesh Verma. Now, the man who got slapped, Sahib Singh, has filed a complaint against the PWD minister and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. The complainant invokes four BNS sections, including hurt and intimidation. This is Congress's Rahul Gandhi has accused the BJP government of using force against people who question those in power, arguing that vote theft buys not just the result, but the arrogance that follows. Parvesh Verma says Rahul Gandhi doesn't know the facts, but the incident took place when the minister was inspecting a newly laid road in the area, and Aam Aadmi Party MLA Janel Singh, who was present at the spot, questioned the quality of the work and actually pulled out portions, as in chunks of the road surface, by hand. A man standing nearby recording the proceedings was then slapped by Parvesh Verma. And now the Delhi BJP is defending him, claiming that Sahib Singh was a habitual offender, flagging an earlier FIR against him too. We've got political reactions that you need to listen to. Listen in.
4: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
5: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
6: उनको भी नुकसान हुआ है?
5: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है। फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
6: कितने बजे हुई है घटना?
5: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है। हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे। 2 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
6: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
5: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं, जैसे ना गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो हैं, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये। और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
7: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई, तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे, और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
8: हम लोग नहीं जाएंगे जब तक परवेश वर्मा पर FIR नहीं होगी। हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
6: आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जनरल जी, जो पूरी घटना हुई है, ये कैसे हुई और उस समय की स्थिति क्या थी?
9: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है। 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है, और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद, कारपेट की तरह। ये देखो ठीक है। अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई। तो मुझे आज संडे का दिन है, 1:15 पर परवेश वर्मा जी, जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं, उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊँ, तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो। बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार, PWD मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया। मैं यहाँ कुछ देर में पहुँच गया तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा। तो मंत्री जी कह रहे, बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी हो गई। तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पर उनको लेके आया, और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है। तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पे आप।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: यू वॉच अस यू ट्रस्ट अस नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: is from the community trying them to explain the entire situation. But recently it was been observed, recent development that was been observed, that during the protest that was seen during the road widening work, there was a clash between police and from the people of the community. And to control the clash, to control the stone pelting situation, police was forced to use tear gases on the crowd. And along with that, if talking about the demolition work that has been done in Ujjain, it is for the Kumbh Mela, the Sihasth Mela has to be, that is proposed to happen on in the year 2028. And yesterday on Sunday, it was also seen that the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, was in Ujjain, where he himself gave a hand to demolish his ancestral home, which was a part, which was coming in the part of the demolition work or for the widening of the work. And along with that, while talking to media, he said that it would be sending messages to the people who are giving their homes for the development work in Ujjain. But because of the Sihasth 2028, the Ujjain has been observed the widening, road widening project, where the 900 meter long road has been widened to 15 meter wide. And many religious sites, most of the 7 religious sites that came in the between of the project were also removed. But today, since mornings, the 600 old Shahi Masjid, which was been proposed to remove for the widening, a part of which was proposed to be removed for the widening of the road, people gathered over there, started protesting against the administration and the police, and a clash was also observed between between two groups, and police was forced to use tear gas to control the situation. Even though now people are over there present at Ujjain's road where demolition work has been done, but people are still protesting against the administration.
1: Right. Well, Tanushree, we're talking about the kind of influx of devotees that they are expecting, and this is going to be happening in 2028. Talk us through, you know, the kind of structural changes that they are planning to make. From what we can see here is that this is, you know, a very sensitive area. This is a mosque, but this is a 29-kilometer stretch, 29 kilometers of new ghats, a diversion project, dams and other infrastructure works that are in that are going to be, you know, the structural changes that are going to be made in order to incorporate that huge, massive influx of pilgrims that are expected during the Mela. This is a very important, very crucial, very spiritual Mela at that. But was this really required? Was this really needed?
0: In 2028, it has been observed that every Kumbh Mela that has been that happens in Ujjain, a crowd of people, a massive crowd of people arrive at Ujjain, for the devotees arrive at Ujjain, and for the entire duration when the Sihasth is being held at Ujjain, a lot of people are present in Ujjain or even in Indore or even around the Ujjain. And for the same, the road widening projects have been started in Ujjain so that the diversions or the massive crowd that arrive can easily reach the temple or the ghat for the Sihasth Kumbh Mela, because for Sihasth Kumbh Mela, people all around the India and all around the country come at Ujjain for the darshans. And talking about the Sihasth 2028, the same projects have been proposed so that the massive crowd can be controlled, the traffic diversions can be made so that there is no issues in 2028. And that is the main reason why
1: word from the authorities as well. Darshan Singh Chaudhary of the BJP joining us. Sir, thank you so much, sir, for speaking with us. Aapka reaction jo ye changes karne wale hain, 272 structures jinko mark kara gaya hai, jin pe demolition drive kari jayegi in order to make the road wide, ye road ko badhane ke liye, kya ye mela zyada zaruri hai than the sentiments of particularly a certain community? Because aap ye jo drive hai, aap ek mosque ke raaste mein leke ja rahe hain.
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार प्रदेश में विकास की गति पकड़ी है, और उज्जैन को लेकर विशेष चिंतित भी उनका गृह नगर भी है, और इतना बड़ा काम कि उनने अपने घर को भी तोड़ने का और अपने हाथों से तोड़वाने का काम किया है विकास के लिए. विकास के लिए कोई समझौता मध्य प्रदेश में नहीं होगा, इसका सीधा इंडिकेशन यही है. और चूंकि आगामी समय में हमारा महाकुंभ वहां पर आने वाला है और इस वर्ष लगने वाला है, तो मैं सबसे पहले पूरी धर्मानुरागियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाने पाए, इसकी पूर्व तैयारी में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार इंदौर आसपास के क्षेत्र में बहुत तेज और द्रुत गति से विकास के कार्य चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में यह चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि सभी आम जनता भी उसमें सहभागी बनकर और सहयोगी बनकर इस, क्योंकि उज्जैन हमारी संस्कृति का प्रतीक है, महाकाल की नगरी है, हमारी परंपरा का प्रतीक है, पूरा देश वहां देखेगा तो एक ऐसा संदेश देश के अंदर जाना चाहिए, जब पूरा देश वहां आएगा तो लगेगा देश नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं, सबसे बड़ा कुंभ यहां पर आयोजित होता है। तो मैं आप सबसे भी अपील भी यही करता हूं, जितने भी जो आ रहे हैं, कई लोगों ने स्वेच्छा से भी ये काम दिया, क्योंकि राष्ट्र का काम है ये, धर्म का काम है ये, हमारे उज्जैन विकास का काम है, उसमें सब सहभागी बने, ऐसी सबसे अपेक्षा।
1: ये काम पूरा नहीं हो सकता था विदाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, जहाँ पर मॉस्क है उसको अगर हम छोड़ सकते थे, उसको अनटच रख सकते थे, क्या जरूरी था कि इस मॉस्क की डेमोलिशन जरूरी थी?
2: देखिए, स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनता है, बहुत इंजीनियर और बहुत प्रॉपर वे में वो काम होता है, और इसमें विकास के काम में, और ये तो आज का नहीं वर्षों का नियम है कि कोई भी विकास के काम में कुछ भी आड़े नहीं आएगा, और जो आड़े आएगा उसको वहां पर ठीक करने का काम किया जाएगा।
1: तो क्या वही रूल आप फॉलो करते?
2: वही रूल, अरे रूल सबके लिए एक सा होता है, ये भारत भारतीयता के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब सही दिशा पकड़ चुका है। हमने देखा काशी बनारस का भी जब कॉरिडोर बना तो कितने प्रकार की बातें वहां पर हुई।
1: सर,
2: थी
1: जो 272 स्ट्रक्चर्स आपने मार्क करे हैं कि इनमें डेमोलिशन करेंगे, उनमें से कोई मंदिर भी इन्वॉल्व है या कोई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है?
2: ये डॉक्टर मोहन यादव जी शुद्ध सनातन नहीं, उनका खुद का घर आया है, इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये विकास की बात है, और विकास में कोई भी रोड़ा ना बने ये हम सबसे अपील भी कर रहे हैं।
1: Right, thank you so much, sir, for speaking with us here on NDTV. So we have a BJP reaction coming about. Darshan Singh Chaudhary, MP of BJP. We also have Shivendra Parmar, my colleague, getting us a ground report from how this situation has erupted from yesterday. There were people of the Muslim community who had gathered there in order to protect the mosque from this demolition drive that has been sanctioned by the Chief Minister, Mohan Yadav. And Mohan Yadav, they're saying that, even he has gone ahead and demolished part of his own childhood home that carried personal significance but was necessary for the larger cause. Let's get you this ground report with my colleague Shivendra Parmar.
3: उज्जैन में पथराव के बाद अब पुलिस प्रशासन लगातार जो है उन लोगों को समझाते हुए नजर आ रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दूर दूर तक जो है उन्हें पुलिस जो है समझाते हुए नजर आ रही है, और इस वक्त जो है फिलहाल पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और सभी लोग जो है जो दंगाई है, जो उपद्रवी है उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि यही वो रोड था जहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी, और आप देखेंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर उस रोड पर फिलहाल जो है कहीं ना कहीं चौड़ीकरण का काम चल रहा था। ऐसे में देखे आप कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर मौजूद थे, और उसके बाद इन पत्थरों के द्वारा जो है उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आगे की ओर बढ़ी है और उन लोगों को समझाते हुए कह रही है कि आप कहीं ना कहीं सब चीज़ें सहमति से हो रही है तो आप इन चीज़ों को बिगाड़े नहीं, और हम आप ही के लिए यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारी इस वक्त मौजूद है और वे समझाते हुए नजर आ रहे हैं, और चारों तरफ जो है पुलिस यहाँ पर तैनात है। और इस वक्त जो है उज्जैन के शाही मस्जिद को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थिति बनी है वो जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। उज्जैन में पथराव के बाद
1: partial removal taking place there at the Shahi mosque. This is in Ujjain, and saying that this is not a demolition of the entire mosque is what the Madhya Pradesh government has said in its defense. Ujjain Municipal Corporation, in fact, has ordered the removal of the portion of the Shahi Masjid that falls within a planned 15-meter road widening with the move linked to the Ujjain development plan for 2035 and the preparation for the Kumbh Mela in 2028. Let's just switch tracks and get you more news coming in. And this is coming out of the state

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands. Every day.

0: मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम आ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपना काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
1: देखिए सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों चाहे धर्म हों समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
2: All right, we're joined on the phone line by Shankar Lalwani, BJP MP from Indore. Sir, your reaction to these developments, some agreement arrived at between mosque authorities as well as the district administration. However, once again, unrest taking place. Phir se wahan par unrest ho raha hai, chal raha hai wahan Ujjain mein. Agreement, samjhota bhi ho gaya hai dono side se.
3: देखिए आप ये बात सही है कि कल रात को ही बात हो गई थी और उस धर्म के सभी नेताओं ने सहमति जताई थी और सहमति के आधार पर कार्रवाई चल रही थी और कुछ खुराफाती तत्व हैं जो अफवाह फैला रहे हैं और न्यूसेंस कर रहे हैं उसके कारण ऐसी स्थिति हुई। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना मकान तोड़ने के लिए शुभारम्भ किया है, खुद का मकान जो पुराना ऐतिहासिक है, तो सबने मिलकर तय किया कि सब बिना जाति धर्म के सब जो सीएस की तैयारी में रोड ग्राइंडिंग हो रहा है उसमें सभी चीजें जितनी रिक्वायरमेंट है सर मास्टर प्लान के अनुसार उतना रोड ग्राइंडिंग करेंगे, तो ये न्यूसेंस नहीं करना चाहिए, ये दुखद होना नहीं चाहिए।
2: जी कांग्रेस ने हावेवर बोला कि ये 600 साल पुराना मॉस्क है, ऑब्वियसली जो एरिया में है टेंशन है और डिस्ट्रस्ट भी है, शक का माहौल भी है, क्लियरली सिटी काजी ने भी बोला है इसके बारे में, बट अभी टेंशन वहां पर चली रही है।
3: कांग्रेस तो ऐसे समय राजनीति करती है, मुझे लगता है विकास में कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए, हमें विकास में सबको साथ में चलना चाहिए, इस प्रकार की बातें कांग्रेस को बोलनी चाहिए। जो सबने बैठ के तय किया प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और धार्मिक नेताओं ने, उस अनुसार काम होना चाहिए।
2: अब क्या करने वाला है इस एरिया में लोगों को बताने के लिए कि वो समझौता हो चुका है, किसी तरह के स्टेप्स लेने वाले हैं?
3: जिला प्रशासन ने अनाउंस किया है, उस क्षेत्र में जाके खुद डीएम ने और कमिश्नर ने खुद जाके अनाउंस किया कि धार्मिक नेताओं ने इसमें सहमति दी और सहमति के आधार पे हम काम कर रहे हैं आगे, बिना सहमति से कुछ नहीं कर रहे।
2: और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो देयर यू हैव द बीजेपी एमपी ऑफ इंदौर स्पीकिंग टू एनडीटीवी सेइंग दैट दिस हैज बीन एन अग्रीमेंट हैज बीन अराइव्ड एट, दैट देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड टू इन्फॉर्म द पीपल ऑन द ग्राउंड, आल्सो हिटिंग आउट एट द कांग्रेस सेइंग दैट दे आर पॉलिटिसाइजिंग द सिचुएशन। लेट्स जस्ट लिसन इन टू व्हाट द उज्जैन डीएम हैड टू से ऑन द मॉस्क डेमोलिशन एज वेल एज द अग्रीमेंट दैट हैज बीन अराइव्ड एट।
1: देखिए सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों चाहे धर्म हों समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
2: Well, let's go across to our reporters now, Tanushree and Anurag joining us for the very latest. Anurag, tell us about this whole road widening. It is being done ahead of a religious, gathering that's going to take place in 2028. Clearly, a lot of distrust as well in this area. However, an agreement has been arrived at.
4: Yes, Gargi, during the last Singhas, around 7 crore pilgrims, they arrived in Ujjain. But this time, that administration is expecting, that around 30 crores pilgrims will arrive in Ujjain. And because of that, many developmental projects, are there in and around Ujjain, including road widening projects in the

0: can see many of the students have already packed their bags and they are leaving for their respective destination. Since yesterday, advisory has been issued by campus authorities. 10 days work has been suspended, so classroom will remain suspended for 10 days. That means the students are permitted to go back to their respective places following consent of their parents. Not only that, those who will stay back at campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocative activity. And besides this, they have also been advised not to amplify any post appearing on social media, any unverified post appearing on social media. Ye campus 10 din ke liye band kar diya gaya hai. To kya kaha gaya aapse?
1: बस 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन आई थी 10 दिन के लिए बंद
2: 10 दिन ऑफ है
0: अच्छा 10 दिन के लिए कैंपस बंद है
1: हां
0: अब तो 10 दिन के बाद अब आप आएंगे यहां पे
1: हां 10 दिन
0: और कोई एडवाइजरी भी इशू की गई है
1: नहीं और तो ये था कि सेफ एंड सिक्योर रहे जो भी अंदर रहना चाहता है वो रूम में रहे बस और कुछ भी नहीं
0: और ये भी कहा गया कि अनवेरीफाइड कोई जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे आए वो उसको
1: कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे बिलीव करना है ही नहीं और जो भी है रूम में रहें जो रहना अंदर रहना चाहते हैं बाकी जो घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं सेफली
0: तो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी हुई आप उससे सेटिस्फाइड हैं
3: यस
1: हां सर सेटिस्फाइड है कोई इशू नहीं है उसमें नहीं सर
0: आप लोग भी अपने घरों में जा रहे हैं अब समय ये 10 दिन के लिए कैंपस बंद रहेगा
3: हां जी
0: तो अपने पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है कोई लेने आ रहा है
3: नहीं हम खुद जा रहे हैं
0: आप खुद ही जा रहे हैं जो ये 2 दिन में हुआ क्या लगता है आपको सारा ये जो हादसा वगैरह हुआ
3: कुछ कह नहीं सकते अभी
0: कुछ आईडिया नहीं है
4: कल यह सारा दिन इंगेजमेंट जो सा चलता रहा क्योंकि साढ़े ऑफिसर्स ने व्यू लिया सीगा कि सिंस देर वॉज सम प्रोवोकेशन उस तो बाद एक्शन होया सी ते असी मिनिमम फोर्स यूज़ करांगे तो अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू यूज़ फोर्स ऑन द स्टूडेंट्स एंड सिंस देर वेर ग्रीवियंसिस अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स वर मेड टू सॉर्ट आउट द ग्रीवियंसिस थ्रू डिस्कशंस तो एक बड़े ओपन माइंड नाल ओपन तरीके नाल स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इस नू वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे कि जड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिड़ी उस नू काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की जाऊगी
5: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं
6: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया
7: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है
8: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे हम अब लोग हमें परेशान मत करेंगे
7: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे
6: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है धन्यवाद
9: Well, let's go across to Pradeep Datta now for more on this entire story. And Pradeep, there's so much confusion in you know, what is happening at LPU. There's been violence breaking out twice and very horrific violence with arson as well. Also, a controversy over these students that were featured in the video by the professional university authorities. They've come out and said that they were coerced. It was used without their consent. So what is the situation on the ground right now? Students have left. The college is closed for 10 days.
0: Yes, if you look at the situation on the ground right now, the things are limping back to normalcy. But yes, an advisory has been issued. Already there has been, the classwork has been suspended for about 10 days. The students had been asked to go to their respective places with the consent of the parents. And those who are going to stay back in the campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocation and not to amplify any of those unverified mail or any unverified the messages they are getting on social media. And the third important thing is that the investigation right now is going on.

0: FIR has already been lodged. Director General of Police was here inside the campus. He reviewed the situation on the ground, interacted with the senior officers, and he said that they are looking into the matter. They will try to look into all the aspects, and even the conspiracy theory also, and everything will be looked into, because special investigation team has already been constituted that is looking into all the aspects. So they said that they try to use the minimum force. What really happened? There were unverified reports about alleged sexual assault of one of the students. Finally, there was a protest inside the campus. Some of them students resorted to vandalism. They broke the window panes. They also started breaking those glasses also there. And finally, they came out on road. They tried to block the road. When they tried to block the National Highway, that was the time when police tried to disperse them. And when police tried to disperse them, they burned some of the police vehicle. They also resorted to stone pelting. And finally, police had to resort to cane charging to disperse them. But now situation is under control. What the students are saying, they think that some outsiders are involved. That's what actually the LPU authorities are also saying. They say that some anti-social elements are behind this conspiracy, because they feel people are trying to tarnish image of the university. That's why they indulge in this thing, and they were trying to spread rumors through social media. And there is another investigation going on, because a similar thing happened in Chitkara Institute also. They feel that this is a similar kind of a template what was seen in Chitkara. Maybe the similar template has been replicated. So they are looking into that aspect. But what is more shocking is that politics has already started over this issue. We have seen that the BJP is trying to blame Aam Aadmi Party. They are saying that this is diversionary tactics, because if we talk about the owner of this university, Ashok Mittal, he was earlier the Rajya Sabha member from Aam Aadmi Party. He had left the party in the month of April this year, and he had joined BJP. And they say, the BJP is saying that basically they are trying to settle score. That's why they have hatched this kind of a conspiracy. Let's see what really will come out. The investigation right now is going on. The only good news is that life is limping back to normalcy after 48 hours.
1: All right, Pradeep, thanks so much for joining us with that. And yes, normalcy now that the university is closed for 10 days. But let's take you, thank you so much, Pradeep, for joining us. Let's take you through all these developments. It was for a second time in less than 24 hours that again, you had this violence breaking out at a lovely professional university campus, with youths vandalizing vehicles, buildings and other properties. But as you heard there, Pradeep was also mentioning this, the students are claiming that outsiders may have been involved in this violence. A Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has ordered strict action against the culprits. He's directed the DGP to visit the spot as well. BJP leader Ravneet Singh Bittu accused the Mann government of allowing the violence, alleging a conspiracy to shut LPU. Congress leader Amrinder Raja Waring also attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling the unrest. Meanwhile, the Akali Dal has also attacked Aam Aadmi Party, alleging that the outsiders were brought in to fuel unrest at LPU. So massive political issue also there, with political conspiracy being alleged.
2: Punjab mein kanoon vyavastha ko Bhagwant Mann sarkar ne gundon ke hawale kar diya hai. Durbhagya se Punjab ho ya Haryana, dono sarkaron ke mukhyamantri comedy show zyada chalate hain aur sarkar kam.
3: ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਨ, ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਅੱਗ ਲਾਓ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿਓ।
4: ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है, पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। बच्चों ने दो प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर जो लोगों को आने जाने में, जो पथराव में लोगों को चोट लग सकती है या कई तोड़फोड़ हुई है, ये गलत है। हर व्यक्ति को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अभी बच्चों को शांति से रहना चाहिए।
1: In other news now, the Delhi Slapgate row is escalating. A complaint has been filed against Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen on camera assaulting a man. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action. AAP workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR as well as the arrest of Parvesh Varma. AAP leader Sahib Singh filed a complaint. He was the man who was seen being slapped. So he has filed a complaint against Parvesh Varma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. Meanwhile, the BJP flagged an earlier FIR against Sahib Singh. The case was registered in June at Tilak Nagar police station, with the BJP also claiming that he was previously arrested. Now, this comes after Aam Aadmi Party has alleged that the newly laid Vikaspuri road was of poor quality, claiming the surface could be pulled up by hand. The BJP has rejected this allegation, and that is why Parvesh Varma was there. The BJP, however, accusing AAP of deliberately damaging the road and staging a controversy to target the government.
5: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया. जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी. उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है.
6: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है. उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे. जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है. वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे. मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे.
7: फोन को भी नुकसान हुआ है.
6: फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा. लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है.
7: कितने बजे हुई है घटना?
6: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है. हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे. 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है.
7: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
6: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब. पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी. पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये. और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है.
8: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है. 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है, और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद, कारपेट की तरह. ये देखो ठीक है. अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई. तो मुझे आज संडे का दिन है, 1:15 पर परवेश वर्मा जी जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं, उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊं तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो. बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार PWD मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया. मैं यहाँ कुछ देर में पहुंच गया तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा. तो मंत्री जी कह रहे बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी हो गई. तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पे उनको लेके आया और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है. तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पर, आप पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया. अब होना ये चाहिए था कि PWD के इंजीनियर से मंत्री जी को जवाब लेना चाहिए था. ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे. बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो.
9: दिल्ली के तिलक नगर में BJP की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई, सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
10: जब हमारे विधायक ने और वहां के लोकल लोगों ने हाथ से तारकोल की रोड को तोड़ के दिखा दिया कि ये रोड निहायत ही घटिया क्वालिटी की बनी है तो प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग जर्नैल सिंह को जवाब नहीं दे पाए, मगर उसके बजाय जो लड़का एक युवा वीडियो बना रहा था प्रवेश वर्मा ने उसको थप्पड़ मार दिया। आप सोचिए। और उसके बाद ये कायर प्रवेश वर्मा वहां रुका नहीं, इतना बहादुर नहीं है ये आदमी, पुलिस और सिक्योरिटी के पीछे छिप के ये आदमी कार से भाग गया।
11: जिस तरीके से कल ओपनली भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर थप्पड़ मारते हैं एक बच्चे पे, देखिए भले ही वो आम आदमी पार्टी का वर्कर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा है। आप बच्चे को ओपनली थप्पड़ मारते हो क्योंकि आपके आसपास पुलिस है। दिल्ली के अंदर रेप होता है पुलिस नहीं दिखती, दिल्ली के अंदर सत्य निकेतन की बिल्डिंग गिरती है पुलिस एक्शन नहीं लेती, वहां पुलिस नहीं नजर आती, बट इन बड़े बड़े नेताओं के आसपास पुलिस नजर आती है। दिल्ली की इनको कोई चिंता नहीं है और आज जो कर्म कांड जिंदगी का होता है वो दिखाई दे रहा है।
1: Shifting focus, the political heat over the Election Commission and the SIR exercise intensifying. Congress Chief Mallikarjun Kharge has called for CEC Gyanesh Kumar's resignation, alleging serious concerns over democracy and the poll process. In fact, the Congress Working Committee will be meeting tomorrow and a meeting of the India bloc later this week. Meanwhile, Union Minister JP Nadda has hit back, accusing the Congress and the India Alliance of spreading confusion over India's progress, saying that Rahul Gandhi and Congress leaders are spreading rumors. Meanwhile, the CPM staged a protest in Patna demanding the CEC's resignation, and there have been protests over the weekend as well over this issue.
12: I have called a working committee meeting on tomorrow, and there we'll discuss, all the working committee members will give their suggestions. And we are going to fight seriously, and particularly this issue is concern to the entire country and also our existence of our democracy and also the country's survival. That's why we are very serious in this issue. We'll fight and we'll see that.
13: आज जब देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर रहा है, वैश्विक मंच पर भारत का डंका बज रहा है, तब दुर्भाग्य से कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन देश की इस प्रगति को देखकर कुंठित है और हताश है। राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता।
14: ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने धोखा दिया इस देश को। यहाँ चुनाव चुराए जा रहे हैं और SIR पूरी तरह से गैरकानूनी, उसका संसद में फॉर्म नंबर 6 के परिवर्तन के लिए संसद में आना जरूरी है 1960 के नियमों को बदलने के लिए, वो नहीं आए तो वहीं से SIR गैर कानूनी हो जाता है, और अगर SIR गैर कानूनी है तो जो नाम काटे गए या जोड़े गए वो सब गैर कानूनी है।
1: Breaking news coming in that Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will be skipping the India Alliance meeting, which will be taking place in Delhi on the 30th of September at Constitution Club. SPMP Ram Gopal Yadav will be attending the meeting in place of Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav will not be attending this meeting. Remember, India Alliance coming together after a long time over the issue of the Chief Election Commissioner and targeting the CEC, demanding his resignation. Already the BJP hitting out over this.
15: अभी हमारी विरोधी है, इंडी गठबंधन भी हमारा विरोधी है, ये जाएं तो भी ठीक, ना जाएं तो भी ठीक, भाजपा का विजय रथ या एक साथ आकर के लड़ेंगे तब भी नहीं रुकेगा, अलग रहकर अलग अलग लड़ेंगे तब भी नहीं रुकेगा, 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना तय है, जनता ने मन बना लिया।
1: Let's go across to Aishwarya now for more. And Aishwarya, this was being seen as, you know, a moment of opposition unity after a long time, this meeting on the 30th of September. Akhilesh Yadav has said he's skipping it because of some, you know, pre-planned meetings and programs. What do we make of this? He is, however, sending a representative.
16: Well, certainly the Samajwadi Party has made it clear that they will be sending the representative to the meeting that the India bloc have called in, as far as the allegations that have been leveled against the CEC. And it is the Bharatiya Janata Party which have hit out at the Samajwadi Party, stating that they have their own agendas in their mind. Certainly, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, is an important member, but he's skipping. The Congress Party have stated that the Samajwadi Party perhaps is sending their representative, and they are very much together with the India Alliance. Perhaps there has been cracks that were witnessed between the opposition. We have seen statements from the Samajwadi Party leaders and the Congress leaders over Akhilesh Yadav starting his Rath Yatra from the Raebareli constituency, where Congress Party have its own bastion. But Akhilesh Yadav, clearly they are campaigning on the behalf of Samajwadi Party, which clearly can be seen as tracks. But the India Alliance seems very confident, stating that the Samajwadi Party is together in the fight against the Election Commission.
1: All right, Aishwarya, thanks so much for joining us. In fact, let's listen into what KC Venugopal had to say.
17: And you are talking about the election, the CWC meeting and the India bloc meeting. So who all are coming? Because Akhilesh Yadav said that he has a prior appointment, so some other senior leaders will be coming.
18: No, that Rajya Sabha election nomination is there in you. That's what he told the Congress president. Yes. Senior leaders from his party, all other seniors are coming.
17: And we will be, what next action will we see?
18: We will decide in the meeting.
1: In fact, this controversy and massive political showdown, in fact, over this chief election commissioner and the opposition demanding his resignation has also led to Mamata Banerjee, former Bengal chief minister, dialing a CPM leader M.A. Baby ahead of a bipoll and also the meeting of the India bloc. In fact, Subhendu Adhikari has now slammed opposition parties, saying reports of Mamata Banerjee dialing M.A. Baby ahead of the bipoll, saying that they are finished. They can hold a meeting with 150 people gathering all their crooks and sycophants from across the state, but it amounts to nothing.
19: कुछ नहीं है, खत्म हो गया है. 150 लोग का मीटिंग किया पूरा प्रदेश से, उनका जितना भी चोर चामचा है सब लोग को लेकर वो खत्म हो गया है. कुछ होने वाला नहीं है यहाँ. ममता बनर्जी, राहुल गांधी और एमएबीबी थोड़ा केरल में हम में जाकर मीटिंग करें एक साथ. हाँ, केरल में कांग्रेस जीता है, वहाँ एसआईआर अच्छा है. और बिहार में कांग्रेस और ममता बुरी तरह से साफ हो गया, यहाँ खराब है, वहाँ मीठा था.
20: ये बंगाल का सवाल है ही नहीं, ये देश का सवाल है. ये देश का सवाल है. एम ए बेबी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है. ये तृणमूल का सवाल भी नहीं है, वो गैर बीजेपी तमाम पार्टियों को खत लिखे हैं. हम बंगाल में सिर्फ पार्टी नहीं, जो व्यक्ति हैं, जो गुट है, और वो सबको भी हम एक साथ करना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्म शिक्षा को बचाने के लिए और वोटाधिकार को वापस लाने के लिए.
21: अभी आपको लग रहा है कि हाथ मिला रहे हैं या पर्दे के बाहर कैमरे के सामने पहली बार हाथ मिला रहे हैं? पर्दे के पीछे पहले से ही हाथ मिला के क्या गले मिला के बैठे हुए आप देख नहीं पा रहे हैं? ये इल्लीजिटिमेट लव अफेयर है, वो चलता है, सालों से चलता है उनका. सारे सो कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ पड़ने वाला.
1: Alright, let's go across to Ritik Mondal now for more on this story. And Ritik, so you have Subhendu Adhikari there ridiculing this, you know, recent development of Mamata Banerjee reaching out to the left, having a conversation with M.A. Baby.
22: See, one thing we need to understand, as per the Bengal politics is concerned, that Trinamool and Congress are being considered as arch rivals of each other since since his inception. But what we know now, Mamata Banerjee dialing MA baby on Friday has triggered a new round of thoughts in Bengal politics, which is why day after that, Mamata Banerjee herself clarified that for the further fight against BJP, she would consider every political party in which are opposing BJP as their friend, which is why she went on record and said that she would not see red or blue as color. So that it means it refers to the recent dialogues between two top leaders of the CPIM and Mamata Trinamool Congress, which is it was a direct message to the party supporters of both the parties as per the Bengal politics is concerned. But BJP has hit out that, you know, taking a jibe, Shubhendu Adhikari, chief minister, has stated that they should, you know, come together as in Kerala, they can fight together with Congress and left and Trinamool Congress. So it's an interesting move as per Bengal politics is concerned. It is yet to see that when this entire batch of opposition leader are expected to meet on 30th of this month, what is going to be happen and what would be the take of the CPIM and Trinamool Congress, especially their alliance, are, you know, fighting BJP hand in hand in Bengal's perspective as well. Back to you.
1: All right, Ritik, thanks so much for joining us with all those details. And from West Bengal now to Jammu and Kashmir, and the BJP has moved a resolution to remove the Jammu and Kashmir Assembly Speaker. The BJP is questioning the conduct of the Speaker after he allowed the resolution for restoration of statehood with a reference to Jammu and Kashmir Autonomy 2000. So now the BJP there moving a resolution to remove the Assembly Speaker. As you can see, chaos there taking place in the assembly with leaders rushing to the well, papers also being thrown and sloganeering taking place in the Jammu and Kashmir assembly. The BJP there asking for the removal of the speaker.
0: At this stage, our certain blogs have reported that some deserving households are not...
1: All right, breaking news coming in from Mumbai, where the parents of Sahil Wakade have begun a hunger strike demanding justice. Remember, Sahil Wakade, a second-year student, was found hanging in his hostel room on the evening of September 18th, hours after he was allegedly caught using his mobile phone to access ChatGPT during an examination. Now, his parents have alleged caste discrimination against their son. The matter is being investigated by the police, and they are now staging this protest at Azad Maidan. In fact, NDTV's Abhishek sent us this report.
2: It's been more than a week after the suicide of IIT Bombay student Sahil Wakode, and his parents are demanding justice. We're present here at Azad Maidan, and you can see they have started their hunger protest since morning and are demanding immediate arrest of Professor Dulla and Director Kedare. Consistently, their allegations were that they were not allowed to protest outside IIT Bombay, and after securing due permission for a day today, they have started their hunger strike. And what they say that subsequently, permission will be taken for further days and this protest will continue. One and single pointed demand that the Professor Dulla and the Director Kedare should be immediately arrested. Crime branch is investigating the matter, and also the statements of both the parents have been recorded. But you know, this situation clearly you can see after in this scorching heat, they are sitting without food, and finally they have lied down with the single pointed demand that the professor and the director should be arrested, and definitely someone should at least take cognizance what they want and what exactly should be done into the entire matter is something what they are expecting.
1: All right, with that, we'll slip into a short break. More news updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: the ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, Young Voices, Bold Dialogues, 28 September 2026.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: the druggie 5-10,000 bucks because arms are so easily available. Go shoot someone. Go fire at so-and-so's house. And that's what's going on in Punjab. There is nothing called law and order in Punjab. Ask anybody.
1: Aam Aadmi Party, there are conflicting reports which have come out on this story, ma'am, if you just focus on what is happening at the Lavi Professional University. Aam Aadmi Party says outsiders may have played a role in the violence and the conflicting narratives. The situation has become extremely political as we're counting down to election in the state of Punjab. My question to you is that what, according to you, has the Punjab government at this point of time completely failed in the state?
0: It has totally, completely and totally, failure is even a mild word. If there was a tougher word, then that distinction needs to be given to this Aam Aadmi, Kejriwal and Bhagwant Mann government. And clearly they are now going to try and do a cover-up operation, blame outsiders who within them. How is Kejriwal and Sisodia and Satinder Jain sitting and controlling every department of Punjab, including the CM, and every department and every police officer, their transfer, everything is being done by them. Are they not outsiders? So clearly all these outsiders who were allowed in, what was the police doing? When there's so many police personnel, how did the outsiders get in? These outsiders who have arrived from Delhi need to answer. And then how are the students catching them? What was this outsider Bhagwant Mann and his police doing? If poor students can catch these guys, then is the police is incompetent? Or are they sleeping or have they been told? And now they've taken those people who the children have caught. Have they registered an FIR? Have they told who they are? Where they've come from? Why is it not being told to the public? So clearly there is something going on. A proper investigation needs to be done. And to spot 3-4 months before elections, if these people could, that Naresh Yadav of theirs could come in 2016
1: right,
0: and do the Beadbi of the Quran Sharif and Maler Kotla and set fire. And everyone knows he got convicted in that. And it was the same Harpal Chima, finance minister, and Harjot Benz, the other minister, who defended him. And the government came in power and took back all this. They could do that
1: right
0: before
1: that
0: election. Then Sam Dham, Dandhe, they are openly saying they're going to do it. 4 months to elections, this is just the start. They're going to set fire to Punjab and to be out of this place as soon as possible.
1: Right. Thanks very much for speaking with us here on NDTV. That was Shirmini Kali, the leader in Bhatinda, MP Harsimrat Kaur Badal. Let's now give you a lowdown of all that has actually transpired at the Lavli Professional University so far. There have been massive protests and demonstrations over alleged sexual assault claims at Lavli Professional University, which erupted into violence, with the situation spiraling into arson and even vandalism. Parts of the campus were set ablaze, which you see on your screens right now, buildings perhaps damaged. Vehicles were torched and property was damaged as clashes broke out between students and police through the night. Police were deployed in large numbers to bring the situation under control, with several police officers reportedly injured in the violence as well. Amid the unrest, LPU has suspended regular classes for 10 days, with a large number of students now packing their bags and heading home from the campus. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has now ordered action against those responsible for the LPU violence. After the CM's directive, DGP Gaurav Yadav visited the spot and assessed the situation on ground. On the other hand, LPU Dean Saurabh Lakhanpal blamed anti-social elements, saying that the university suspects a conspiracy and that there might be a hand from outside. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
2: 40 घंटे के बाद एलपीयू में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे रूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
3: बेसिकली हमें रेडिट पे मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और 2 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया. तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था. उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना. उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हो।
2: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
3: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है।
2: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
4: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है। अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी सीसीटीवी से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क, पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो। अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें में ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे। कि कहीं उन्होंने देख लिया कि एसी है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं।
2: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
5: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा। अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी।
2: आप भी उस समय बाहर थे जब?
5: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे।
2: बाहर जलाई किसने? पुलिस की
5: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे।
2: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
5: पीसफुल प्रोटेस्ट तब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को।
6: इवन आई एम ओवर हियर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ।
2: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फर्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
7: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं और बात ये है कि ये मुद्दों का फायदा उठाया गया है।
8: सारा दिन इंगेजमेंट जो सा चलता रहा, क्योंकि साढ़े ऑफिसर्स ने व्यू लिया कि देर वॉज सम प्रोवोकेशन, उस तो बाद एक्शन होया सी, असी मिनिमम फोर्स यूज करांगे, तो अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू यूज फोर्स ऑन द स्टूडेंट्स, एंड सिंस देर वेर ग्रीवियंसेज अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एफर्ट्स वर मेड टू सॉर्ट आउट द ग्रीवियंसेज थ्रू डिस्कशंस। तो एक बड़े ओपन माइंड नाल, ओपन तरीके नाल, स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इसनों वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे, कि जड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई, तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिड़ी उसनू काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की कीती जाऊगी।
9: FIR थी वो हमने रजिस्टर कर ली थी, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम लगी हुई है, तो अभी उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा।
10: विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाए?
9: देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में हम कर
10: रहे हैं। सर क्या रूमर है, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स है, एक्चुअल रियलिटी क्या, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर प्लांटेड या फैब्रिकेटेड मैसेज?
9: देखिए FIR दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्टूडेंट्स को क्लियरली हमने ये भी बताया कि पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट वर्ती है विच, और कोई पुलिस मतलब पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, हम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बच्चों जैसे हैं, और इसीलिए जो कल पूरा दिन नेगोशिएशंस मल्टीपल नेगोशिएशंस हमने की, और स्टूडेंट्स को भी हिदायत की गई कि जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें।
1: And we have some more breaking news coming in on this very story. As we can see, this issue has become extremely political, and now the Bharatiya Janata Party has also hit out at what is happening at the lovely professional university. Politics over LPU violence. BJP says deliberate bid created unrest. BJP goes on to say that the students have been largely charged at Aam Aadmi Party's behest. The Bharatiya Janata Party also says that Punjab police rather manhandled the students. This at a time when we've been seeing vandalism inside the campus at LPU. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has said that the situation needs to be probed and we are taking all required action. But politics erupting over this issue few months ahead of elections in Punjab, with the BJP now saying that Aam Aadmi, that there's been violence and arson under the Aam Aadmi Party's rule in Punjab, and politics over LPU violence as well. A short, I want to take a listen to what Pradeep Bhandari said. We'll go back to him then again.
11: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पंजाब पुलिस का ये ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी।
1: So witnessing politics erupting over what happened at LPU, there's a political war that has now escalated over the LPU campus unrest. With the opposition gunning for the Punjab government, BJP has now hinted at a conspiracy, alleging that the Bhagwant Mann-led Aam Aadmi Party government orchestrated the violence. BJP alleges that the escalation happened because Dr. Ashok Mittal, who runs the university, switched from Aam Aadmi Party. Congress too has attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling the unrest in the state. Meanwhile, the Shiromani Akali Dal has also attacked the Aam Aadmi Party, alleging that outsiders were brought in to fuel unrest at LPU.
11: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे पंजाब पुलिस का एक ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी।
12: व्यवस्था किसी नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार। थोनू कहता बहुत बारी क्या है कि हालात जेड़े बड़े नाजुक ने, इत्थे पुलिस डर रही है। इन्ना माड़ा हाल में कदे पंजाब दे इस तरह के हालात नहीं खराब हुए थे। भगवंत मान मुकम्मल तौर पर फेल मुख्यमंत्री हो चुके हैं।
13: पंजाब में कानून व्यवस्था को भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है। दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम।
14: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है। इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया। पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया। झूठा आरोप बनाया गया पहले कि अरेप का है, अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई।
15: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्हां ने बारले सन, यूनिवर्सिटी नू बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उथे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नू जला के राख कर दियो।
16: ये कि इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आती है। अगर उसकी कोई हुआ तो उसकी अगर शिकायत लिखाई जाती है तो सर पुलिस को एकदम उसमें अपने एक्शन में आना चाहिए। बच्चों ने क्यों इकट्ठे होकर उनमें आक्रोश हुआ, इस कारण कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनसे उनको हमेशा ये उम्मीद होती है भी जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम की जाए, कानून के तहत होती है, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, बच्चों में आक्रोश आया, तो इस कारण सब इकट्ठे होकर आगे बात होती है, वो बिगड़ जाती है। ये हमेशा एक संवेदना के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की ज़रूरत है, कैसे उस बात को संभाला जाए, आपस में बातचीत होकर ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है।
1: We're slipping into a very short, quick break, but come right back. Lots more lined up.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: insiders infiltrated the campus protests.
1: 48 घंटे के बाद एलपीयू में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे रूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
2: बेसिकली हमें रेडिट पे मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और दो दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था. उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना, उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हुआ.
1: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
2: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है सीजीपीए के लालच में. ये सब हमें इन्फॉर्मेशन गर्ल्स हॉस्टल से आया था.
1: जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आपने वेरीफाई किया, किस नंबर से आ रही थी?
2: नंबर नहीं, वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: अच्छा, वीडियो मैसेज,
2: वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
3: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है. अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी सीसीटीवी से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क, पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो. अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें उनमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे. कि कहीं उन्होंने देख लिया कि एसी है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं.
1: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
4: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा. अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई. कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी.
1: आप भी उस समय बाहर थे जब?
4: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे. बाहर
1: जलाई किसने पुलिस की गाड़ी?
4: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे.
1: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
4: पीसफुल प्रोटेस्ट तब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को.
1: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
5: ये तो अच्छा है एक लगह से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फ़ायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ. इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सबको ही परेशान है. हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव लेके, और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ खराब हुई है.
1: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
6: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट. इट्स अ सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर नॉट इवन अवेलेबल मैनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. सो वैंडलिज्म इज ऑलवेज वेरी वर्स्ट. सो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते. इवन आई एम अ ओवर हेयर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ.
1: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
7: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, और बात ये है कि ये मुद्दों का फ़ायदा उठाया गया है.
1: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्ज़ाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
8: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था अंदर, तोड़फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा ही, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था खास करके, वो काफ़ी दुखद था.
1: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
2: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए. अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता.
1: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
3: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना क्या. वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट है.

0: यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
1: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि सुनने में आया था कि गर्ल की इससे कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है खिलवाड़, तो हम भी प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर हमने सडनली देखा कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का एक मेरे लिए बड़ा शौक ये था कि कोई भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रात में नहीं था, जबकि यहाँ इतने सारे गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी थे, बट रात में कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर वगैरह नहीं कर रहा था। एक वो मेरे लिए मेजर शौक था कि इतना हो रहा है और काउंटर कुछ भी कॉलेज की तरफ से कोई काउंटर मेजर नहीं लिया गया था।
0: और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं आप? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं?
2: पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, एक लेखा से ये अपना काम करे और ये रिजल्ट मिलेगी। और सबसे पहल का बात कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये था, इस पर काम करे और पकड़े। रेप हुआ है तो किस लड़की का हुआ है ये जानने की कोशिश करे, लड़की का नाम नहीं पता है।
3: So students there of the lovely professional university telling NDTV about how they feel the outsiders who infiltrated the protests, and that's why for a second time there was arson and destruction taking place on campus. Now the college has been closed for the next 10 days and many of the students have also gone home, with a large number of students in fact packing up their belongings. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has ordered strict action against those responsible for the violence, and after the Chief Minister's directive, the DGP Gaurav Yadav visited the spot. He assessed the situation. On the other hand, the Dean Saurabh Lakhanpal blamed anti-social elements, saying that the university suspects a conspiracy.
4: ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਸ ਦੇਰ ਵਾਸ ਸਮ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਨੋਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੇਰ ਵੇਅਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਫਰਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਟੂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ थ्रू डिस्कशंस। तो एक बड़े ओपन माइंड नाल, ओपन तरीके नाल, स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इसनों वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे, कि जिहड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई। तो FIR दर्ज करन तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिहड़ी उसनों काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की कीती जाऊगी।
5: FIR थी वो हमने रजिस्टर कर ली थी, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम लगी हुई है, तो अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा।
6: विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाए?
5: देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में हम कर
6: रहे हैं। क्या रूमर है, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स है, एक्चुअल रियलिटी क्या, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर प्लांटेड या फैब्रिकेटेड मैसेज?
5: देखिए FIR दर्ज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्टूडेंट्स को क्लियरली हमने ये भी बताया कि पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट वर्ती है इहदे विच, और कोई पुलिस मतलब पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। हम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बच्चों जैसे हैं, और इसीलिए जो कल पूरा दिन नेगोशिएशंस, मल्टीपल नेगोशिएशंस हमने की, और स्टूडेंट्स को भी हिदायत की गई कि जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें।
7: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है, और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
3: All right, and a political war also over the violence that broke out at the LPU. In fact, all gunning for the Bhagwant Mann government, claiming a conspiracy. The BJP has said because Dr. Ashok Mittal switched from Aam Aadmi Party to the BJP, and that is why this violence was orchestrated on the campus of the university. Congress too has attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling unrest, while the Akali Dal also attacked up, alleging that outsiders were brought in to fuel the unrest.
8: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पंजाब पुलिस का एक ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी।
9: व्यवस्था के से नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है यार। थोनू कहता बहुत बारी क्या है कि हालात जड़े बड़े नाजुक ने, इत्थे पुलिस डर रही है। इन्ना माड़ा हाल में कदे पंजाब दे इस तरह के हालात नहीं खराब हुए सी। भगवंत मान मुकम्मल तौर पर फेल मुख्यमंत्री हो चुके हैं।
10: पंजाब में कानून व्यवस्था को भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है। दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम।
11: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है। इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया। पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया, झूठा आरोप बनाया गया पहले कि रेप का है। अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई।
12: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्होंने बाहरले सन, यूनिवर्सिटी नू बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उथे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नू जला के राख कर दियो।
13: ये कि इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आती है। अगर उसकी कोई हुआ तो उसकी अगर शिकायत लिखाई जाती है तो सर पुलिस को एकदम उसमें अपने एक्शन में आना चाहिए। बच्चों ने क्यों इकट्ठे होकर उनमें आक्रोश हुआ, इस कारण कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनसे उनको हमेशा ये उम्मीद होती है कि जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम की जाए, कानून के तहत होती है, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, बच्चों में आक्रोश आया, तो इस कारण सब इकट्ठे होकर आगे बात होती है, वो बिगड़ जाती है। ये हमेशा एक संवेदना के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की ज़रूरत है, कैसे उस बात को संभाला जाए, आपस में बातचीत होकर ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है।
14: देखिए, ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। हमेशा ही जब ये सात मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा वाले बीजेपी में आए तो आपने देखा किस तरह इन्होंने वो जो अपने क्रिकेटर थे हरभजन सिंह, उनके घर के बाहर लिखा भाई ये यानी कि देशद्रोही है, ये इसने पार्टी को धोखा दिया है। सो ये एक तरीका तौर तरीका है आम आदमी पार्टी के लोगों का, भाई ये उन लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। यही लवली यूनिवर्सिटी में जो ये काम चल रहा है इसके पीछे आम आदमी पार्टी सारे जितने, क्योंकि बड़े जितने भी ये गलतियां करते हैं उसको छुपाने के लिए इन्होंने इस किस्म का ये सारा षड्यंत्र किया।
3: Alright, let's shift focus now to the Delhi slapgate row, and this is after Delhi Minister Parvesh Verma slapped a man yesterday as he was on a road inspection. He slapped him right on camera. A complaint has also been filed by the man against the Delhi minister. However, Parvesh Verma has claimed that the man, who is a member of the Aam Aadmi Party, was in fact abusing his family. Now, AAP has hit the streets demanding action. AAP workers staged a protest outside Parvesh Verma's house in the national capital, demanding the minister's arrest. Parvesh Verma has said that Jarnail Singh works on the behest of AAP and he wanted to seek revenge. AAP leader Sahib Singh has filed a complaint against Parvesh Verma. He is the person who was slapped, Sahib Singh, and he has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. Meanwhile, the BJP has flagged that there was an earlier FIR against the slapped man Sahib Singh. The case was registered in June, is what the BJP has pointed out, and that he was previously arrested in this case as well.
15: आज दिल्ली में एक 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी

0: को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं, और जो एक्सटॉर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है। जो लोग सारा एक्सटॉर्शन करते हैं वो दिल्ली का मोबाइल नंबर नहीं रखते, वो दुबई का मोबाइल नंबर रखते हैं ताकि कोई उनके मोबाइल को टैप नहीं कर सके। आज से 3 महीना पहले जर्नैल सिंह के खुद के सगे भांजे ने, और जो कल आम आदमी पार्टी का गुंडा जिसने मेरे राउंड को खराब किया, वो दोनों के ऊपर में FIR दर्ज होती है और वो दोनों को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है।
1: मैं अभी 4:30 बजे वहां पे तिलकनगर जा रहा हूँ इस सिलसिले में, और सड़क वहाँ पे जो बनाई इन्होंने वो हाथ से निकल रही थी, टूट रही थी, कल सब लोगों ने वीडियो पे देखा। और इनके मंत्री जो हैं, इनके मंत्री ने खींच के थप्पड़ मारा एक लड़के को, मंत्री को गिरफ्तार करो, और इन सारे इंजीनियर्स को जो जिन जिन लोगों ने सड़क बनाई है उनको गिरफ्तार करो।
2: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना का घोटाला हुआ है, उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले, उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
3: उनको भी नुकसान हुआ है?
2: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है, फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
3: कितने बजे हुई है घटना?
2: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है, हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके 1.5-2 घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे, 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
3: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
2: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं जैसे ना गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये, और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
4: So Delhi Minister Parvesh Verma, they're justifying the slap, saying that Sahib Singh, the man who was slapped, had a case against him previously. Well, with that, we'll sip into a short break. Coming up on the other side, opposition protests over the Chief Election Commissioner. Stay with us.

0: with the claims doing the rounds that two girls are missing. Other claims start doing the rounds that they heard some girls screaming from the girls' hostel. Rumors then spread about molestation and alleged rape of those two female students. Well, hundreds of hostelers then started gathering, demanding answers. And this is exactly how all that has transpired at LPU, which led to what we are showing you here on our screens right now, the vandalism and the protests by the students. Police say that there's perhaps been some role by the outsider at the LPU, but what triggered this protest and vandalism at LPU? It all started with some kind of an unverified rumor, an unverified video. And well, my colleague Pradeep Datta has been tracking this story very closely. He sent us this report from LPU. Take a look.
1: 48 घंटे के बाद एलपीयू में यहां पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे रूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
2: बेसिकली हमें रेडिट पर मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और दो दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था. उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना, उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हुआ.
1: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
2: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है CGPA के लालच में. ये सब हमें इन्फॉर्मेशन गर्ल्स हॉस्टल से आया था.
1: जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आपने वेरीफाई किया, किस नंबर से आ रही थी?
2: नंबर नहीं, वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: अच्छा, वीडियो मैसेज,
2: वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
3: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है. अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी CCTV से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क, पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो. अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें में ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे, कि कहीं उन्होंने देख लिया कि AC है उसको

0: भी उस समय बाहर थे जब
1: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे।
0: बाहर जलाई किसने पुलिस की?
1: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे।
0: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
1: पीसफुल प्रोटेस्ट तब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को।
0: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
2: ये तो अच्छा है एक लगा से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ। इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सबको ही परेशान है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव लेके, और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ खराब हुई है।
0: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
3: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट। इट्स अ सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर नॉट इवन अवेलेबल मैनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो वैंडलिज्म इज ऑलवेज वेरी वर्स्ट, सो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। इवन आई एम अ ओवर हेयर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ।
0: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फर्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
4: सर देखिए, अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, और ये बात ये है कि ये मुद्दों का फायदा उठाया गया है।
0: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्जाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
5: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था, खास करके वो काफ़ी दुखद।
0: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
6: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए। अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता।
0: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
7: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना है। वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना, आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट है।
0: क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
5: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि सुनने में आया था कि गर्ल के इससे कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है खिलवाड़, तो हम भी प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर हमने सडनली देखा कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का एक मेरे लिए बड़ा शौक ये था कि कोई भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रात में नहीं था, जबकि यहाँ इतने सारे गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी थे, बट रात में कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर वगैरह नहीं कर रहा था। एक वो मेरे लिए एक मेजर शौक था कि इतना हो रहा है और काउंटर कुछ भी कॉलेज की तरफ से कोई काउंटर मेजर नहीं लिया गया था।
0: और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं आप? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते?
2: पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है एक लिखा से, ये अपना काम करे और ये रिजल्ट मिलेगी। और सबसे पहल का बात कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये था, इस पर काम करे और पकड़े। रेप हुआ है तो किस लड़की का हुआ है ये जानने की कोशिश करे, लड़की का नाम नहीं पता है।
8: So you heard what the students of LPU have to say, but let's now tell you where the probe is headed to at this point of time. There have been an SIT team that's been formed, but as we speak, where is the probe headed to? First up, an SIT probe, that's a mistake, an SIT probe has been formed. The FIR has been filed against unknown people at this point of time. Second, this is what the Punjab police also been doing. CCTV phone records have also been examined. So far, that is when an SIT team has been formed. Forensic analysis also being conducted. They're trying to talk to the students and to understand what exactly happened. That's in one angle an SIT team has been formed. Second, a riot investigation is taking place. Inquiry into campus vandalism and arson. This is exactly what happened outside the LPU campus, where police vans were also burnt and vandalized. So there's been a separate parallel inquiry into the campus vandalism and arson. They're also looking at various angles. Number one, potential involvement of outsiders, with a lot of students saying that it's not the students of LPU but rather outsiders who have created this chaos and vandalism at LPU. Apart from that, we've spoken about SIT probe and the parallel inquiry. LPU is also conducting its own internal probe. LPU has initiated its own probe right now. By that, they're talking to various students, they're gathering statements, and they're also gathering the CCTV footage to understand what exactly happened with these protests that

0: events that led to this escalation. Take a look.
1: 48 घंटे के बाद एलपीयू में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे र्यूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
2: बेसिकली हमें रेडिट पर मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और दो दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था. उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना, उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हुआ.
1: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
2: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है सीजीपीए के लालच में. ये सब हमें इन्फॉर्मेशन गर्ल्स हॉस्टल से आया था.
1: आ रही थी जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आपने वेरीफाई किया, किस नंबर से आ रही थी?
2: नंबर नहीं, वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: अच्छा, वीडियो मैसेज,
2: वीडियो मैसेज आ रहा था.
1: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
3: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है. अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी सीसीटीवी से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल है उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क, पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो. अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें में ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे. कि कहीं उन्होंने देख लिया कि एसी है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं.
1: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
4: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा. अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई. कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी.
1: आप भी उस समय बाहर थे जब?
4: हाँ, हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे. बाहर
1: जलाई किसने पुलिस की गाड़ी?
4: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे.
1: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
4: पीसफुल प्रोटेस्ट अब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को.
1: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
5: ये तो अच्छा है एक लगा से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फ़ायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ. इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सबको ही परेशान है. हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव लेके, और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ ख़राब हुई है.
1: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
6: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट. इट्स अ सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर नॉट इवन अवेलेबल मैनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. सो वैंडलिज्म इज ऑलवेज वेरी वर्स्ट, सो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते. इवन आई एम अ ओवर हेयर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ.
1: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
7: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, और ये बात ये है कि ये मुद्दों का फ़ायदा उठाया गया है.
1: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्ज़ाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
8: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा ही, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था खास करके, वो काफ़ी दुखद था.
1: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
2: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए. अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता है, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता.
1: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
3: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना है. वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर के इन्वॉल्व।

0: गवर्नमेंट है,
1: क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
2: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं कि सुनने में आया था कि गर्ल की मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है।

0: लड़की का नाम नहीं पता है।
1: नाउ rumor which has started this unrest at this moment, the investigation is on, but there is political war on this which has already started. The BJP calls this trigger as a toolkit, while the Aam Aadmi Party has said that the police is investigating this entire matter. Just take a look at how the political parties have now jumped in into this entire controversy.
2: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है। इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया। पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया, झूठा आरोप बनाया गया पहले कि अरेप का है। अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई।
3: कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
4: ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਸੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਪੇ फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखिए।
5: पंजाब में कानून व्यवस्था को भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है। दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम।
6: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्होंने बाहरले सन यूनिवर्सिटी नु बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उत्थे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नु जला के राख कर दियो।
1: All right, the government in fact is saying that there is investigation which is going on at this moment. Let's very quickly listen in to my colleague Gurpreet Cheena, who is tracking the developments on this. Gurpreet, the opposition is calling it the toolkit. The opposition is saying that this is the failure of the Bhagwant Mann government. What is it that the Aam Aadmi Party government defense on this is?
7: Well, a clear word from the Chief Minister. He says he has already given a direction to the DGP Punjab that this matter should be investigated thoroughly. In the morning, it has been seen that DGP has also visited the campus and he has given assurance that they are trying to get all the CCTV camera footage from this place, and they have made special investigation team to investigate this matter. If we can talk about opposition, whether it's BJP, Congress or Akali Dal, they have been hitting out at the government. They say the way this government was not able to handle the situation, it seems that law and order has been collapsed. So let's see that what will be the final outcome of this investigation, which has been started by the Punjab police, and special investigation team has been formed by the Punjab police. And the way we are showing all these CCTV camera footage to our viewers, let's see that whether the police will be able to identify these people or not. That okay. We have to wait and watch how the investigation will be unfolded in the coming days.
1: Thank you, Gurpreet, for joining us with all those details from Phagwara. But, you know, it's not just Punjab, ladies and gentlemen. There is the similar impact of rumors that we are now seeing in Ujjain as well. A tense showdown broke out in Ujjain between the police and a large group of protesters over the proposed partial demolition of the historic Shahi Masjid. Ujjain District Magistrate issued clarification and said the community is currently undertaking the task of relocating the religious shrine at the Kshatriya Chowk with their own hands. It is crucial to clarify that one should not pay heed to any rumors or misinformation. The city Qazi also stated the mosque issue has been resolved last night. Meanwhile, stones were hurled at security.

0: Security forces, and there was massive tension at the spot. The police responded with firing multiple rounds of tear gas shells, dispersed the crowd to and restore order. Lathi charge was also used by the police. Take a look.
1: उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। फिर पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े। दोपहर में एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये वही शाही मस्जिद है जिसे तोड़ा जा रहा है। इसका एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण में आ रहा है, जिसके चलते इसे तोड़ा जाना था, लेकिन अफवाहों के चलते लोगों में आक्रोश आया और यहाँ पर पथराव जैसी स्थितियाँ बनी और बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
2: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाज़ारों में न खड़े हों, बाज़ारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
3: शांति व्यवस्था कायम है और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करने में, शांति व्यवस्था को भंग करने में कोई भी इस तरीके की चीज़ें ना करें। खासकर सोशल मीडिया पे मैं सभी से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार की भ्रामक खबरों पे ध्यान ना दें।
4: उज्जैन में बहुत गांधीवादी तरीके से जनता ने अपने 650 साल पुराने धार्मिक स्थल को बचाने का काम करा और वो लगातार 2 दिन से वहाँ पे 8 से 10 हजार पब्लिक रोड पर बैठी थी, मस्जिद में जमा है। वहाँ दो लोग हैं, शेर काजी हैं खलीकुर रहमान साहब और उज्जैन में एक नुमाइंदा कमेटी है। उस नुमाइंदा कमेटी के सरपरस्त भी शेर काजी हैं। लगभग उनका और गवर्नमेंट का डायलॉग हो गया और ये हुआ कि जो दुकानों के ऊपर का छज्जा है उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं, जो दुकानों के ऊपर है। मस्जिद से कोई मुहादन नहीं हुआ और अभी न्यायालय में भी बहस शुरू होने वाली है, 1:30 बजे बहस शुरू हो जाएगी। तो मैं सबसे कहूंगा संयम रखें और पुलिस से कहूंगा कि कैन चार्ज और बलपूर्वक हटाने का काम ना करें।
5: हमारा काम 9:45 बजे से जो मस्जिद कमेटी है उसके द्वारा 9:45 बजे से लगातार जारी है और वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। अभी हमने पूरी पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत हम लोग एक बार पूरे इलाके में, जो संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर एक बार फ्लैग मार्च भी करेंगे और रात्रि में भी हमारे जो अश्वरोही दल हैं लगातार डिप्लॉयड रहेंगे और इस पूरे एरिया को हेविली डोमिनेट किया जाएगा, जिससे मस्जिद कमेटी को काम करने में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो और बाकी सभी लोगों को ऑनबोर्ड लिया जा रहा है।
1: सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों पर FIR?
5: 15 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और 7 से ज्यादा FIR हम इस मामले में अभी तक दर्ज कर चुके हैं।
1: सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही, रात में भी पुलिस बल डिप्लॉयड?
5: सोशल मीडिया पर भी डिप्लॉयमेंट हमारा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरी टीम द्वारा लगातार जो पूरा इलाका है उसमें डिप्लॉयमेंट बनाए रखा जाएगा।
3: देखिए, सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है, देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
0: So there are rumors which are leading to protests into violence. We have seen that in Punjab. We have now seen that in Madhya Pradesh as well. What happened in this case in Ujjain? In fact, agreement was reached overnight and talks between the administration and the city qazi. But the rumors, ladies and gentlemen, kept saying that there was no agreement and the police is forcefully breaking the mosque. That resulted in that kind of problem in Ujjain. Now affected portion is being removed by the community members, by the mosque committee itself, claimed that the demolition was being forcibly carried out. That led to the violence that we saw in Ujjain and the tensions. Now, removal linked to road widening project. Crowd began gathering near the mosque when the rumor spread that it was to break the entire mosque, just a portion of the mosque which it is being broken at this moment for the road widening project. Let me very quickly go across to Tanushree Desai, who's joining us from Ujjain at this moment. Tanushree, what is the situation on the ground at this moment? Is the situation under control? एंड व्हाट अबाउट द डिमोलिशन प्रोसेस ऑफ दैट

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Allegedly, his Aam Aadmi Party worker has gone viral. Look at this. Parvesh Verma comes out. This is when there were questions being raised about the quality of road construction. Aam Aadmi Party MLA Jarnail Singh and others had made a video. Parvesh Verma went there to check that whether the road quality was good or not. There were people, those who were taking his video. And one of them, who is an Aam Aadmi Party worker, and while he was taking the reaction and of the minister, Parvesh Verma came out and slapped that person. You would see that in this video, how Parvesh Verma, the minister, goes out and slaps this person. Now, the question is whether the minister, no matter what had happened, does he have the right to slap anybody, even if that person is a political worker of the opposition? And that's the big question, ladies and gentlemen, which has now exploded as this Slapgate controversy is escalating in the national capital. Now, complaint has been filed against PWD Minister Parvesh Verma over the assault on Sahib Singh. That's the person who got slapped. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action against the minister. AAP workers protested outside Parvesh Verma's residence demanding the minister's arrest. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal has now visited Tilak Nagar, alleging corruption in the road work and demanding a probe into the construction work. Parvesh Verma, meanwhile, maintains that Aam Aadmi Party workers abused his family and says he reacted in anger. Sahib Singh has filed a complaint against Parvesh Verma and others. The police say complaints have been received from both sides and allegations are being verified. The BJP has also flagged an earlier assault case against Sahib Singh in which he was arrested as well. But again, it comes down to the question. No matter what this person said, Parvesh Verma could have gone and registered an FIR against him. Parvesh Verma could have, in fact, spoken against this person. But he decided to use violence. And if this would not have been the minister, would the police have reacted in the same manner? That's the important question. Take a look at some reactions.
1: तीन महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटॉर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है। जो लोग सारा एक्सटॉर्शन करते हैं वो दिल्ली का मोबाइल नंबर नहीं रखते, वो दुबई का मोबाइल नंबर रखते हैं ताकि कोई उनके मोबाइल को टैप नहीं कर सके।
2: कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच कर थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते। मैं आज यहाँ पे मांग करता हूँ कि आप मंत्री जी को बर्खास्त कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए और जनता से माफी मांगिए।
3: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना का घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला, उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
4: उनको भी नुकसान हुआ है?
3: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है, फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
4: कितने बजे हुई है घटना?
3: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है। हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे। 2 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
4: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
3: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के। मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये, और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
5: बड़े खेद की बात है, ये मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कभी हुआ हो कि एक मंत्री खुद जाके एक एमएलए ने वीडियो डाली, टेढ़ नगर के एमएलए ने, और मंत्री खुद जाते वहां पर फोन करके एमएलए को बुलाते हैं और एमएलए पास होने के बावजूद 45 मिनट में के बाद आते हैं क्योंकि वो लोग इकट्ठे करके ला रहे हैं। ये एक वहां के एमएलए के भतीजे हैं, पहले भी उन पे ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ है, करण सिंह सानो सुखबीर सिंह, यही काम उन्होंने पहले किया था, इस साहिब सिंह को साथ लेकर वहां के एक जेई को पीटा, बहुत बुरा हालात कर दिए और उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च करानी पड़ी और ये लोग अंदर बंद हुए थे। ऐसे के साथ केजरीवाल जी आप क्यों खड़े हैं, आज देश के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं।
6: कल जिस तरह का विवाद यहाँ पे देखने को मिला, आप भी मौजूद थे, परवेश वर्मा मौजूद थे, आपकी ओर से कुछ कहा गया। अब बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि उनके परिवार को गाली दी गई, उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया, ये परवेश वर्मा का कहना है, क्या कहना चाहेंगे?
7: देखिए, बच्चों की तरह आप सिर्फ निराधार आरोप लगा रहे हैं, सारी चीज़ ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है और मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ जिसमें मेरे यहाँ गाड़ी उतरने से लेकर परवेश वर्मा जी का गुंडागर्दी करने से लेकर उनके भागने तक का सारा वीडियो, उस वीडियो में एक शब्द भी हमने अगर उनके परिवार के बारे में बोला हो तो हम पर कार्रवाई करें। पर जो साफ साफ दिख रहा है कि परवेश वर्मा जी सवाल पूछने वाले लड़के का मोबाइल तोड़ रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं और सड़क की क्वालिटी की हकीकत उनको दिखाई, तो PWD के इंजीनियर से सवाल करने की बजाय हम पर चढ़ रहे हैं। इस सब मामले से ये जाहिर होता है कि वर्मा जी इस करप्शन में शामिल है और ये जो क्राइम इन्होंने किया, थप्पड़ मारा है एक नौजवान को, उसके ऊपर FIR अभी तक नहीं।
0: ऑलराइट, माय कॉलीग तेजश्री इज नाउ जॉइनिंग अस फ्रॉम द विकासपुरी पुलिस स्टेशन इन द नेशनल कैपिटल वेयर द आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। दे वॉन्ट एक्शन तेजश्री अगेंस्ट परवेश वर्मा, वॉट इज द पुलिस सेइंग अबाउट दैट?
8: Well, absolutely. That development we'll come to know in just some time from now, because what we are given to understand is Saurabh Bharadwaj, Janrail Singh and the man who was allegedly assaulted by Parvesh Verma is inside the Vikaspuri police station, and outside here we are giving you the visuals of just outside Vikaspuri police station where the Karyakartas are sitting on protest and they are also demanding resignation of Parvesh Verma. The accountability needs to fix this, they are saying. And also, in fact, remember that the controversy actually began after a video from Parvesh Verma's road inspection in Tilaknagar, just which is few meters away from this very police station, which showed that minister allegedly slapped a man who was recording a video and while exchange between him and AAP MLA Janrail Singh. And then later on, he also did question the quality of the road. We also did report from the very road showing that how the situation of that road, the condition actually of that road was quite poor and crumbling. And here, in fact, that is why the AAM Aadmi Party Karyakartas have been protesting. But this is not just only about road, Ankit. This is also about the misconduct of a Neta towards an AAM Aadmi, because that is completely unacceptable is what we saw. But keeping that aside and talking about the political war of words, yet it has intensified between Aam Aadmi Party and the BJP, where Aam Aadmi Party has been demanding resignation of Parvesh Verma, seeking accountability and responsibility for whatever has happened. Arvind Kejriwal, the convener of AAP, had also reached the very spot where the incident took place. We were reported from there as well. And also, in fact, the BJP has been now stating that it is nothing but just a political gimmick.
0: The visuals are very, very clear. A minister assaulted the Aam Aadmi Party worker. No matter what the provocation was, nothing justifies violence. And that is exactly what the minister chose. And let me also tell our viewers, there is no special immunity that a minister has when it comes to taking law in their own hand, waiting for what the Delhi police does in this case. All right, with that, we are slipping into a short break. Coming back with much more on the other side. Stay tuned, ladies and gentlemen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: उसी के वजह से थोड़ा सा सबको ये भी है कि क्या पता हॉस्टल में ना घुस जाए, इसलिए अब हम लोग घर घर जा रहे हैं। जब माहौल ठीक हो जाएगा सब तो वापस आ जाएंगे।
1: कल सिचुएशन तो सुबह तक लाइक नॉर्मल था कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड पे बैठ के वगैरह वगैरह, बट जैसे ही रात हुआ पता नहीं वो चीज़ मतलब बाहर से बहुत सारे बंदे आ रहे थे एंड उन्होंने मास्क लगा के रखा था एंड फिर पूरा वॉयलेंस हो गया हमारे कैंपस के अंदर, पूरा तोड़फाड़ होने लगा है। सारे ब्लॉक्स में वो लोग जा के तोड़ रहे थे सब कुछ, जो कि स्टूडेंट वो लोग नहीं थे एंड फिर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो गया था रात को।
2: अभी जो सिचुएशन चल रही है अंदर वो थोड़ा हाथ के बाहर जा रही है और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है उसमें, मोस्टली गून्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए अभी सबसे प्रायोरिटी सेफ्टी है क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो गर्ल्स के लिए चल रहा है, लेकिन गर्ल्स ही अंदर सेफ फील नहीं कर रही है।
3: This sudden campus flare-up has left not just people flabbergasted, but has also set off a political fight. Naturally, this is a state which is going to be very closely contested. It's going to see elections next year. It's already in the thick of an election campaign, even if not officially. Questions are now being asked of not just the state government, but also of the Cockroach Janata Party. The questions are why this students-related issue hasn't brought the CJP to campus? Who was behind fueling this violence? Remember, the owner of this university is a Rajya Sabha MP who initially was with the Aam Aadmi Party and then switched over to the BJP. The Akali Dal is absolutely clear. The BJP is saying that this was done deliberately in order to target Ashok Mittal, the owner of LPU.
4: Aam Aadmi Party ke instruction pe Punjab ke chhatraen, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखिए, ऑल ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट मियरली ऑर्गेनिक, ये एक लार्जर टूलकिट का हिस्सा है जिस टूलकिट के तहत देश भर में देश के युवा के कंधे पे ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये षड्यंत्र के बहाने या तो सत्ता में देश में आ जाए, या जहां इनकी सरकार है या लेजिटिमेट इशू है वो अपने गुंडों को भेजकर युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं।
5: ये बदला लिया जा रहा है डॉक्टर अशोक मित्तल जेडे ओदे मालिक ने, क्योंकि तुसी सारे जानदे सी वो आम आदमी पार्टी दे एमपी बने सी ते बीजेपी च चले गए, उत्थे इनसाइट कीता जा रहा है, उस गल नू अग लाई जा रही है कि होर तोड़फोड़ करो, कोई ना एक दिन ला लो, दो दिन ला लो, इहदी तसल्ली करा दिओ, इहदे यूनिवर्सिटी दे पल्ले छड्डियो, कुछ ना इहदा कारोबार तहस नहस कर दिओ।
6: कानून व्यवस्था किसी नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार, तुहानू कहता बहुत वारी क्या कि हालात जिहड़े बड़े नाजुक ने, इत्थे पुलिस डर रही है, इन्ना माड़ा हाल मैं कदे पंजाब दे इस तरह दे हालात नहीं खराब हुए सी। भगवंत मान मुकम्मल तौर पर फेल मुख्यमंत्री हो चुके हैं।
7: पुलिस ने उनके साथ किसी किस्म की कोई बर्बरता नहीं की। एसआईटी बन गई, एसआईटी अब इस चीज़ की जांच कर रही है कि वहां पर क्या क्या हुआ। आगे आने वाले दिनों में जब ये एसआईटी की जांच आ जाएगी तो क्लियर होगा कि घटनाओं के पीछे कौन लोग थे। अगर कोई भी ऐसा आंसर पाया गया जिसने इन घटनाओं में हिस्सा लिया है या उन्होंने बच्चों को भड़काया है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
3: And that brings us to the only questions that anyone who has watched what happened at the Punjab campus is asking today. Who is behind this violence? What is the motive? And was this but a trial run for something much, much more sinister, what is being called now the toolkit of anarchy? Joining us now, we have Tuhin Sinha. Joining us from the BJP, we have political analyst Tushar Gupta, Anish Gawande, spokesperson of the NCP Sharad Pawar. But my first question is Chirag Sethi, representing the Aam Aadmi Party today. Chirag Sethi, in a matter of 48 hours, two campuses go on the boil and you see wanton violence taking place inside LPU. Now, multiple political parties who are in the opposition to you in Punjab are saying this was done deliberately to target Ashok Mittal, who has moved to the BJP, because you want him to be made into an example.
8: Padmuja, first of all, this is very unfortunate that has happened in the universities. In 24 hours, we got the FIR done. We got an SIT made on the allegation what the students have made against the university or what has allegedly happened inside the campus. An SIT has already been made and the CCTV footage

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands every day.
4: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV.

0: सुबह।
1: वाह मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
5: यू वॉच अस यू ट्रस्ट अस नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू योर सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीटीवीज जर्नी एंड एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 वी आर आस्किंग फॉर योर वोट वोट फॉर एनडीटीवी एंड शो योर सपोर्ट फॉर द जर्नलिज्म यू ट्रस्ट इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड एवरी वोट मीन्स अ ग्रेट डील टू अस सो डू वोट शेयर द लिंक्स एंड चीयर
4: NDTV. 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है वक्त तराशता है जिसे तो जाने क्या क्या ना करता है जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए आराम के लिए नहीं ठहरता है जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger. Boulder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: A healthier India doesn't happen in a day.
7: It starts with the health choices that we make every day
8: har ghar tak sehat ki sahi jankari pahunchi

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आग प्योर मसाला।
4: A healthier India doesn't happen in a day.
5: It starts with the health choices that we make every day.
6: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
4: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
7: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
6: One informed choice और एक healthier action.
4: Giving better health in more hands. Every day.

0: out in Ujjain before between police and a large group of protesters over the proposed partial demolition of the historic Shahi Masjid. Now, Ujjain DM issued clarification and said that the community is currently undertaking the task of relocating the religious shrine at Kshatriya Chowk in their own hands, and it is crucial to clarify that one should not pay heed to any rumours or misinformation. And remember, all of this, the chaos broke out after an agreement last night was already reached between the admin of the mosque and the police officials. However, that agreement did not reach to the ears of the mosque administration, to the public there who were protesting, and hence it resulted in chaos. There was the city Qazi also that stated that the mosque issue had been resolved last night. Meanwhile, there were stones hurled at security personnel as tensions escalated at the police. Police responded by firing multiple tear gas shells to disperse the crowd and restore order, while rapid action force personnel were deployed alongside local police to control the situation.
1: उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। फिर पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े। दोपहर में एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये वही शाही मस्जिद है जिसे तोड़ा जा रहा है। इसका एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण में आ रहा है, जिसके चलते इसे तोड़ा जाना था, लेकिन अफवाहों के चलते लोगों में आक्रोश आया और यहाँ पर पथराव जैसी स्थितियाँ बनी और बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
2: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाज़ारों में न खड़े हों, बाज़ारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाह है उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
3: देखिए, सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है, देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
0: Let's tell you about what's happening in the state of Tamil Nadu, where the state chief minister Vijay fulfilled a key poll promise today as he launched the state's 1 gram gold ring scheme for newborn babies, a welfare initiative that was aimed at encouraging institutional deliveries in government hospitals. Vijay personally handed over the gold rings to newborn babies, but the scheme has already triggered questions from the opposition and healthcare workers over its implementation and procurement. Here's the full story.
4: It was baby's day out with Tamil Nadu Chief Minister Vijay. 30 newborns were given 1 gram gold ring. It wasn't just a gesture of affection, but a major welfare promise fulfilled. This was the launch of Thaimamam Thanga Mothiram Thittam in Madurai. At Government Rajaji Hospital, Vijay held newborn babies and personally handed over the 22 carat gold rings. The scheme is named after the traditional role of the maternal uncle who welcomes a newborn and supports the mother and child.
5: This scheme is very good initiate that show that how important the saving is for even if we are having a girl child. This scheme is very useful for us.
6: I am very happy. Thank you so much, Anna Vijay Anna.
7: Thank you so much to Tamil Nadu government and CM Vijay Anna for offering the scheme to all the children who are giving children who are newborn babies. So I was happy.
4: The Tamil Nadu government has allocated ₹755.83 crore for the program. Around 1.28 lakh gold rings have already been procured for the initial rollout. The scheme covers eligible babies born in government hospitals to native mothers, with eligibility also linked to Tamil Nadu residency, PICME registration and an RCH ID. The government says the larger objective is to promote women's health and encourage more families to choose institutional deliveries in public hospitals. The benefit applies to eligible babies born on or after June 22, 2026. But the scheme has also drawn criticism. Opposition leaders have questioned the use of the Tamil Nadu Medical Services Corporation, traditionally associated with procurement of medicines and medical supplies, for procuring the gold rings.
8: Yeah, he had promised, I don't know how long he is going to do it, but now it is not the need of the hour. There are many issues, cost of vegetables, rice, everything is going up. This government has not done anything. But for the sake of this election, they are doing this scheme, that's all.
4: Healthcare workers have raised a different concern, security. The Service Doctors and Postgraduate Association has flagged the difficulty of safely storing gold rings in hospital lockers. The TVK government, however, says the scheme is specifically designed to encourage institutional deliveries and that legal opinion was obtained before implementation.
9: This is a historic scheme which a lot of people were expecting as a because it is a Tamil sentiment, as Thai Mom is a Tamil sentiment and Tamil women's sentiment, and the CM has assured them like he'll be their Thai Maman and he'll be with their as a guardian, he'll safeguard the women and the children of this state.
4: For the state government, it is both a welfare measure and a symbolic gesture, bringing the traditional bond of the maternal uncle into a state-backed benefit for newborns. The scheme will now be rolled out across Tamil Nadu. With Vijay Gopal in Madurai, Bureau Report, NDTV.
0: Well, Tamil Nadu Chief Minister Vijay and Udayanidhi Stalin are locked in a fresh war of words. With the bipoles approaching, Chief Minister Vijay has hit out at the DMK, calling it an evil force and accusing it of repeatedly criticizing and slandering his government. Udayanidhi Stalin has now hit back at the Chief Minister, turning Vijay's Om Shakti Parashakti remark into a counter-attack against the TVK themselves. At a rally, Udayanidhi chanted Om Kali Jai Kali before the crowd raised slogans targeting TVK. The BJP has slammed Udayanidhi over the remarks, accusing him of using a Hindu religious mantra while attacking his political rival. Here are some reactions.
10: Om Shakti Parashakti! Om Shakti Parashakti! அப்புறம் ஏன் இந்த தீய சக்தி நம்மளை பார்த்து தினம் தினம் இந்த மாதிரி அவதூறா அசிங்கமா ஆபாசமா பேசிக்கிட்டு ஒரே ஆபாச நதியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நாட்டில்
11: சொன்னார்னா கடந்த 2 வருஷமாக சொல்லியிருக்கிறாரு. ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு சொல்லி திமுகவை சொல்லி திட்டி இன்னைக்கு அவர் எல்லா இடத்துலையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இன்னைக்கு அவரு அப்போ எதிர்கட்சியா இருந்தார், நாம ஆளுங்கட்சியா இருந்தோம், பொறுப்பா கேட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம வாய்ப்பு, இவ நம்ம டர்ன். இப்போ நாம திருப்பி கொடுக்கணுமா வேணாமா? திருப்பி கொடுப்போமா? நான் சொல்றேன், அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. சரியா? ஓம் காளி ஜெய் காளி. திருப்பி சொல்லுங்க. ஓம் காளி ஜெய் காளி. அவர் பேரை சொல்லாதீங்க, அழுவாரு. அதுக்கும் என்னதான் திட்டுவாரு. அவர் கட்சி பேரை சொல்லிடுங்க. சரியா? ஓம் காளி ஜெய் காளி. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு இந்த எலெக்ஷன்.
12: திமுகவை யாராலையும் அழிக்க முடியாதுன்னு கனிமொழி மேடம் சொல்லுவாங்க, கலைஞர் சொல்லுவார் முன்னாடி. இப்ப யாருமே அழிக்க வேணாம். மு க ஸ்டாலின் புள்ள உதயநிதி போதும் அழிக்கிறதுக்கு, அவங்களே அழிச்சுக்குவாங்க. திமுகவை அழிக்க வந்தவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள்.
13: The point is that this is a government made up of members who are becoming legislators for the first time. They have come to government without much of a political experience. So my sense is that the bureaucracy is wielding an undue amount of influence over them, and they still don't have the experience to overrule the bureaucracy or to rein in the bureaucracy. But I hope that these events will give them the experience to rein in the bureaucracy. These are decisions which only the political leadership must take. The Chief Minister and his senior ministers must deliberate about these things before these kind of gazettes are issued.
0: Well, the political heat over the Election Commission and the SIR exercise is intensifying. Congress leaders staged nationwide protests demanding resignation of CC Gyanesh Kumar. There will be a CWC meeting tomorrow as well, while the opposition Indy bloc will meet end of the month. Congress Chief Mallikarjun Kharge has called for